0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया, बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य

0: उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहाँ शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
2: Every nation has a mission.
3: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
2: So diversity has to be celebrated.
1: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
4: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन काल, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री

0: बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुआकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधा कृष्णन पत्थनमथिट्टा जिले में अरणमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भोटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतर

0: अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
1: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: best of entertainment, information, education अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
3: और ये
4: मेरी गुड़िया के नाम
5: दादी आपके नाम
6: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो
7: शुभ शुभ बोलो
8: क्या
9: आरबीआई कहता है
10: जानकार बनिए सतर्क रहिए
11: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहां आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं हैं मदद बस एक कॉल दूर है
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
13: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात के इस नए एपिसोड

में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे

0: एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
1: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा कि इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
0: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, तारकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
1: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी तीन लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
0: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनालिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनालिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, एक साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया, और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव दो प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे, या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशंस आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको किसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इम्प्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि

0: हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास से एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप।
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है, और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है।
2: साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए, भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने, इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे, इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई, और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया

अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभर बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है

क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल 1/4 एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदु पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं।

साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी

0: हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: आकाशवाणी ప్రధానమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి చేసిన మన్ కీ బాత్ ప్రసంగానికి తెలుగు అనువాదం వింటారు.
4: ప్రియమైన దేశవాసులారా, నమస్కారం. మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ఈ కొత్త ఎపిసోడ్లోకి మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాను. మన దేశవాసుల విభిన్నమైన కృషిని ప్రదర్శించేందుకు, వినూత్నమైన ఆలోచనల్ని ఆవిష్కరించేందుకు, చర్చించేందుకు ఈ మన్ కీ బాత్ ఒక వేదిక అని మీ అందరికీ తెలుసు. అయితే ఈ ఆలోచనల్లో చాలా వాటి వెనక తమ

0: digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. MOUs in this regard are expected to be signed today. Today, Prime Minister Narendra Modi first attended a yoga program organized by the Yoga Federation of Uzbekistan, and later he reached to the palace of Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, where he was given a ceremonial welcome. And now, both the leaders are participating in the bilateral talks. Prime Minister Narendra Modi has said that the Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat campaign is gaining momentum rapidly across the country. Sharing his thoughts in the Mann Ki Baat program on Akashvani this morning, Mr. Modi expressed happiness that the campaign with the goal for drug-free youth and a drug-free India is not merely a formality, as many people, especially the youth, are joining it in large numbers.
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया. बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं. आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है.
0: The Prime Minister said drug addiction does not just engulf a single individual, but the entire family and society bear the consequences. He commended those who raise awareness against drugs and step forward to help individuals struggling with addiction.
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो, क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो. हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है. मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले.
0: The Prime Minister said lakhs of women are gaining new strength through the PM Swanidhi Yojana. He said this aspect of women empowerment is not discussed as much as it should be. Mr. Modi said women account for approximately 46% of the beneficiaries of the PM Swanidhi Yojana.
1: PM Swanidhi Yojana ke labharthiyon mein kareeb 46% mahilaen hain. यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं. गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है. बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी. फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी. पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया.
0: The Prime Minister said cleanliness has a remarkable quality. He said when the resolve to keep a place clean becomes the people's own commitment, it completely changes the identity of that place.
1: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं. उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई. वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है. बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े. धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे. एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई. ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं.
0: Mr. Modi said today the flight of the country's daughter's dreams is soaring from the earth to the outer space. He said India is bringing together thousands of daughters who are nurturing such dreams from across the globe. The Prime Minister said the initiative is named Mission Shakti Sat, and through it 12,000 girl students from 108 countries are getting the opportunity to learn satellite technology in the field of innovation.
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है. इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट. इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है.
0: Mr. Modi spoke to Krishna Sheshadri from Mumbai, who has created a unique website, www.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी

0: स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था? आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
1: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्य पर तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुआ में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की

0: खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
1: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं, उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
4: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था, जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीह बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर, भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीती अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा।

0: मूर्ति मानधना उप कप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम के अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना एक सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि ये पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्यूरेटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం 102.2 బొమ్మరిల్లు పిల్లల కదంబ కార్యక్రమం వింటారు. ముందుగా వాణిజ్య ప్రకటన. నాకు అడ్మిషన్ వచ్చింది, కానీ మా కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల ఫీజు చెల్లించలేకపోయాము. అప్పుడు మేము SBI ప్లాటినం జూబ్లీ ఆశా స్కాలర్షిప్ గురించి తెలుసుకున్నాం. అవును, అర్హత కలిగిన విద్యార్థులకు 15,000 నుండి 15 లక్షల వరకు స్కాలర్షిప్స్. లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ 75% మార్క్స్ లేదా 7.5 CGPS సాధించి ఉంటే మీరు అర్హులు కావచ్చు. September 4th లోపల అప్లై చేసుకోండి. ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ లాగిన్ టు SBI scholarship.co.in. SBI, the bank to every Indian.

0: చిత్రతరంగిణి కార్యక్రమం మీరింతవరకు విన్నారు. ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం 102.2 వింటున్నారు. సమయం 6 గంటలు కావస్తుంది. ముందుగా హిందీలోను అనంతరం ఆంగ్లంలోను వార్తా ప్రసారం. ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మే సర్ ఫిరోజీ. भारत और उज्बेकिस्तान ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया. ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है. राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान श्री मोदी ने आपसी संबंधों के समूचे आयाम की समीक्षा की. प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं.
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है. आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे. हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है. इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया.
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं. इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है. आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है. हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है. अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे. इसके लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है. इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की. प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद ताशकंद से किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे. श्री मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है. आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देशभर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं. नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है. आपदा के 5वें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं. बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं. विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है. पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है. 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता है. वहीं 28 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं. पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे. 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं. पेइचिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है. भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर 4थी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है. इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है. मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड

0: उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में आज रात 8:30 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8 बजे वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। जर्मनी की टीम चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी, वहीं स्पेन पहला खिताब जीतने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership, marking a significant step towards in ties between the two countries. Both sides also signed several memoranda of understanding, MOUs, aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors. These include mining, Ayurveda, tourism, economic and financial dialogue, higher education and environment. India and Uzbekistan also agreed to set an ambitious target of $5 billion in bilateral trade by 2030. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his opening remarks, Prime Minister Modi said the elevation of ties is expected to provide a renewed framework for expanding cooperation between New Delhi and Tashkent across various sectors.
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: Prime Minister Modi said the two countries are also working on a framework for the long-term supply of uranium. Later, at a joint press conference with the President of Uzbekistan following the talks, Prime Minister Modi said both countries have zero tolerance for terrorism, extremism and separatism.
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: Prime Minister Modi said the two countries will also step up cooperation in the field of sports and work towards the promotion of Hindi in Uzbekistan. As part of the initiative to promote Hindi, a scholarship has also been announced. On the occasion, Prime Minister Modi was also conferred with Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oley Darajali Dostlik, by President Mirziyoyev. Prime Minister Modi dedicated the award to the enduring bond between India and Uzbekistan. Mr. Modi reached Tashkent yesterday on a two-day state visit to Uzbekistan at the invitation of Mr. Mirziyoyev. From Uzbekistan, the Prime Minister will reach Kyrgyzstan this evening to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit at Bishkek tomorrow. Several union ministers, including Defence Minister Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Finance Minister Nirmala Sitharaman, have congratulated Prime Minister Modi on being honoured with Uzbekistan's Supreme State Award. Prime Minister Narendra Modi today shared his thoughts with the nation in the Mann Ki Baat program on Akashwani. In his address, Prime Minister Modi strongly warned against the social perils of drug abuse and highlighted Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat campaign. He also championed women-led economic empowerment through the PM Swanidhi scheme and celebrated growing avenues for women at advanced fields like the space industry. He also praised groundbreaking grassroots innovation in agriculture and digital technology. The death toll from flash floods in Nepal has risen to 768 today, with more bodies being recovered. Over 2,500 people are still missing following the disaster. The Nepal government has issued fresh alert for flood in Bhote Koshi River in

0: बहुत सारे लोग विशेषकर हमारे युवा बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।
1: प्रधानमंत्री न्यवेदयत यत मादक द्रव्य व्यसनम केवलम एकम जनम न ग्रसते अपितु समग्रह परिवारह समाजश्च अस्य दुष्परिणामान भुंक्ते। सह तेषां सर्वेषां भूरिशः प्रशंसां कृतवान् ये मादक विरोधी जागरूकतां प्रसारयन्ति अथ च मादक द्रव्येन पीडितानां सहायतायै अग्रे आगच्छन्ति।
0: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री अवदत् यत् पीएम स्वनिधि योजना माध्यमेन लक्षशः महिलाः नूतनं सामर्थ्यं प्राप्नुवन्ति। सः अकथयत् यत् महिला सशक्तिकरणस्य अस्मिन् उपक्रमे यावती चर्चा भवेत् तावती न दृश्यते। श्रीमोदिना स्पष्टीकृतं यत् पीएम स्वनिधि योजनायाः लाभार्थिषु प्रायः 46%मिताः महिलाः सन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् स्वच्छतायां बहवो गुणाः भवन्ति। सः अवदत् यत् यदा कस्यचित् स्थानस्य स्वच्छता संकल्पः जनसामान्यस्य स्वकीय संकल्पः भवति तदा सः तस्य स्थानस्य समग्र स्वरूपमेव परिवर्तयति।
0: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: श्री मोदी अवदत् यत् अद्य देशस्य कन्यानां स्वप्नाः भूमेः आरभ्य अन्तरिक्षं यावत् विस्तीर्णाः। सः असूचयत् यत् भारतं समग्र विश्वस्मात् सहस्रशः कन्याः एकत्र आनयति याः एतादृशान् स्वप्नान् पश्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अस्य उपक्रमस्य नाम मिशन शक्ति सेट इत्यस्ति येन 78 देशानां 12,000 छात्राः नूतनोन्मेष क्षेत्रे उपग्रह प्रौद्योगिकीं ज्ञातुम् अवसरं प्राप्नुवन्ति। प्रधानमन्त्री मुंबई नगरस्थेन कृष्णशेषाद्रि इत्यमुना सह सम्भाषणम् अकरोत् येन www.bharatrajya.com इति एकं विशिष्टं वेबफलकं निर्मितम्। अनेन वेबफलकेन कस्यापि वर्षस्य चयनेन जनाः सहजतया ज्ञातुं शक्नुवन्ति यत् तस्मिन् काले भारतस्य कस्मिन् भागे कस्य शासकस्य शासनमासीत्। श्रीमोदी अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे वन्दे मातरम् इति गीतस्य 150वीं जयन्ती वर्तते, अतः इदं वर्षम् इतोप्यधिकं विशिष्टं महत्त्वमावहति।
0: तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे।
1: मध्य नेपाले आकस्मिक जल प्रलयेन मृतानां संख्या समेध्य 68-70 संवृत्ता। अद्यापि मृतवपुंसि सम्प्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2,500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पंचमे दिने सहायोद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम

0: आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक 5 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1.5 लाख डॉलर की आपातकालीन सहायता जारी की। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्र वृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए 10 लाख डॉलर का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्री के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार 1 बिलियन डॉलर पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक 5 बिलियन डॉलर व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन

0: की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR News हिंदी और पब्लिक पर एट AIR News अलर्ट को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
3: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
3: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
3: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
4: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़।

हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट

0: प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट एट एआईआर न्यूज हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेइचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 150,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक 5 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Uzbekistan elevate bilateral ties to comprehensive strategic partnership, seal long-term uranium supply pact and set $5 billion trade target by 2030. Prime Minister Narendra Modi conferred Uzbekistan's highest state honor, reaches Kyrgyz Republic to take part in 26th SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi warns of perils of drug abuse in Mann Ki Baat program, celebrates women's economic empowerment, girls entering space industry and agricultural innovation. Nepal issues fresh flood alert along

0: Vote Koshi River, 149 Indians rescued so far as death toll crosses 780. WHO releases $150,000 emergency aid. And in men's hockey, Germany and Spain locking horns for coveted World Cup title in Belgium. And now the news in detail. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In its remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress, and prosperity in Central Asia.
1: इस वर्ष हमारी strategic partnership के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को comprehensive strategic partnership का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president following the talks, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है. आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को-प्रोडक्शन और को-डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे. हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है. इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा.
0: Mr. Modi said India and Uzbekistan will jointly organize a business summit involving business leaders from both the countries.
1: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो. यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे. आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं. हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए.
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड द टू कंट्रीज विल आल्सो सेट अप कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स.
1: स्पोर्ट्स भी हमारे सहयोग के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभर रहा है. पिछले वर्ष गोवा में 20 वर्षीय उज्बेक ग्रैंड मास्टर सिंदारोव ने वर्ल्ड कप जीता. अब नवंबर में उनका मुकाबला भारत के 20 वर्षीय चेस चैंपियन गुकेश के साथ होने वाला है. एक बिसात पर जब ये दो युवा सितारे आमने सामने होंगे तो जाहिर है इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर होगी.
0: Mr. Modi announced 100 Lal Bahadur Shastri scholarships for Uzbek students to promote the Hindi language in the Central Asian country, along with the establishment of a Sanskrit chair at Tashkent State University of Oriental Studies. India has pledged $1 million for afforestation in the Aral Sea region. The two sides also agreed on an arrangement allowing Indian UPI apps to scan Uzbekistan's national UZ QR codes for merchant payments. A letter of intent was also signed for the restoration and conservation of the Buddhist sites of Fayaz Tepa and Kara Tepa in Uzbekistan. On the occasion, Prime Minister Modi was also conferred with Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oli Darajali Dostlik, by President Shavkat Mirziyoyev. Prime Minister Modi dedicated the accolade to the 1.4 billion people of India and highlighted that it is a symbol of the enduring friendship between the two civilizations. Several union ministers, including Defence Minister Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, and Finance Minister Nirmala Sitharaman, have congratulated Prime Minister Modi on being honored with Uzbekistan's Supreme

0: इरादे से इस एशिया कप में वो आई हैं, जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है, और आसान नहीं होता पंकज जिस तरह की वापसी करना जब आपने 10 ओवर में लगभग 100 रन बनवा दिए और सिर्फ दो विकेटें गिरी हैं, और इसके बाद से वापसी निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल काम होता है किसी भी टीम के लिए.
1: नो डाउट अबाउट इट. एंड इंडियंस रशिंग थ्रू देयर शॉट्स. क्रांति गौड़ हियर द लास्ट बैटर इन द मिडल एंड इंडिया नीड टू प्ले 20 ओवर्स. इट्स अ साइकोलॉजिकल मार्क. But Thailand today have done a phenomenal job and they might just create history at the Dubai International Stadium. Chanida Bowles trying to go for that big shot towards long off. Kranti will open the account. 138 now for the loss of 9 wickets. Unbelievable action in the last 5-7 overs, Iqbal. And the way, and Chanida, we were talking about her in swing and she was getting it right on the money. And the Thailand girls have rushed through that Indian middle order in the last 6-7 overs, and that has made a lot of difference. India will need to look at it very, very sharply. Sri Charani there. Now, you can't really expect a lot of runs from these batters here, but the fact remains that will India be able to play the 20 overs is the big question. Nicely flicked off her legs by Sri Charani in the deep backward square leg region. She will pick up a couple of runs to open her account, and the score moves up to 140 for the loss of 9 wickets. Just 3 runs from Chanida in this over and a wicket. And if you look at her bowling analysis earlier, Chanida has bowled 2 overs and has given away 11 runs, and now she picked up a wicket in her third over. Very, very good bowling, and captaincy from Thailand has also been very, very good, where they've changed the fielders, the bowlers. They have a lot of bowlers in their squad, which makes a lot of difference for them, gives them a lot of options. Coming around the wicket, this time hitting the pads of Sri Charani, trying to kind of work it on the onside. But that is end of over number 18. 140 for the loss of 9 wickets. Can this last pair survive another 12 deliveries, Iqbal? A very important statement here by the Thailand girls in this particular Asia Cup.
0: निश्चित तौर पर बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है थाईलैंड ने, और भारत को इस समय सोचने पर विवश किया है कि आखिर किस तरह से उन्होंने गलतियां की हैं, और खास तौर पर जो गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक्स बीच में आए हैं, खास तौर पर कप्तान हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, और दो रनआउट्स जो थाईलैंड ने एग्जीक्यूट किए, उन दो रनआउट्स का भी बड़ा अहम योगदान है, और दोनों रनआउट डायरेक्ट हिट के जरिए उन्होंने आउट किए हैं. बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन, कमाल की वापसी. पहले 10 ओवर भारत के नाम, लेकिन अगले 10 ओवर में जो वापसी की है थाईलैंड ने, वो बहुत ही अनबिलीवेबल लगती है, यकीन के परे लगती है कि भारत जैसी टीम के खिलाफ थाईलैंड जैसी टीम इस तरह की वापसी करेगी. माया 19वां ओवर लेकर के आ रही हैं, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पहली बॉल. इस पहली बॉल को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर, रन आउट का वहां पर चांस है, लेकिन सीधा थ्रो इस बार लगा नहीं, और ऐसे में एक रन जोखिमपूर्ण ही सही भारत के खाते में आता हुआ.
1: एक बार थिंग्स आर टर्निंग आउट, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन द कॉन्फिडेंस गोज अप, व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू. थाईलैंड डेफिनेटली हैज गॉट अ बिट ऑफ लक टुडे, एंड अ बिट ऑफ yes yes no no kind of a situation. It's the last pair in the middle, but that is what T20 cricket is all about. That's the beauty of this shorter format of this wonderful game.
0: ye 19वां over chal raha hai, aur ye pehla mauka hai jab koi direct throw miss kiya hai thailand ne. is over ke agli ball ke sath taiyar hain gendbaz गेंदबाजी करने के लिए. पिछली 30 गेंदों पर 25 रन भारत ने बनाए हैं और 4 विकेट गंवाए हैं. राउंड द विकेट आते हुए इस बार अगली गेंद फुल टॉस पर लेकर इस गेंद को ड्राइव किया, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद, स्वीपर कवर पर, एक रन से ज्यादा मिलेगा नहीं, और इसे एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ भारतीय टीम का अब हो गया है 142 रन 9 विकेट के नुकसान पर. अंतिम जोड़ी मैदान पर है भारत की तरफ से, और इस अंतिम जोड़ी से उम्मीद यही की जा रही है कि कम से कम ये 20 ओवर्स खेल जाएं, भारत ऑल आउट ना हो, वरना ये अपने आप में बड़ी ऐसी बात हो जाएगी जहां आप कह सकते हैं कि जग हसाई वाली बात. अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को फुल पिच थी, ऑन ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर, एक रन आसानी के साथ लिया बल्लेबाज क्रांति गौड़ ने, और इसे एक रन की मदद से अब स्कोर बढ़ता हुआ 143 रन भारत का 9 विकेट के नुकसान पर 18.3 ओवर के बाद.
1: In fact, Iqbal, India would be backing themselves because they have a very strong bowling lineup and they have got some good runs on the board. But of course, as we mentioned at the beginning of the commentary, that in a multi-team format, the net run rate is always a very, very crucial thing, and this is a wonderful opportunity for India.
0: Agli ball ke saath round the wicket aa rahi hai Maya. Agli gayand aur is bar off stump ke bahar is

0: गेंद को कट किया, गेंद जा रही है पॉइंट और कवर के बीच में, एक रन आसानी के साथ, और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ भारत का 144 रन 9 विकेट के नुकसान पर। श्री चरणी 4 पर और 3 पर क्रांति गौड़ बैटिंग कर रही हैं। माया का ये तीसरा ओवर है, अब तक उन्होंने 29 रन दिए हैं और कोई सफलता उनको प्राप्त नहीं हुई। पिछली 18 गेंदों से भारत ने कोई चौका या छक्का नहीं लगाया है, अपने आप में ये सारी कहानी आप समझ सकते हैं। अगली गेंद हाई फुल टॉस, बॉलर के सर के ऊपर से उछाला, लेकिन बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाएगी गेंद, गेंद को रोक लिया गया। क्या नो बॉल का इशारा अंपायर का आएगा? ऐसा लग रहा है कि सिंगल तो भारत ने पूरा किया है लेकिन नो बॉल करार नहीं दिया गया। गेंद डिप कर रही थी और कदमों का इस्तेमाल करते हुए भी खेला था बल्लेबाज ने, तो ऐसे में ये नो बॉल नहीं दिया गया। गेंद डिप कर रही
1: मार्जिनल
0: डिप कर रही थी गेंद। फिलहाल अंतिम गेंद के साथ माया तैयार हैं, सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज नंदिनी। ये गेंद नंदिनी के लिए और एक बार फिर से हाई फुल टॉस, इस बार इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर क्रैश किया लेकिन स्वीपर कवर ने दौड़ लगाते हुए गेंद को फील्ड कर लिया। सिर्फ एक रन आखिरी बॉल पर, और इसी के साथ 19 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद भारत 146 9 विकेट के नुकसान पर। कम से कम अच्छी बात यह हो रही है पंकज कि भारत 20वें ओवर में प्रवेश कर रहा है।
1: Yes, and as OP Sharma, our statistician, gave us a number, highest score for India against Thailand is 148. Probably they should go ahead of that and there shouldn't be a need of rewriting some stats there. But important here is that the Thailand players are enjoying themselves. If you see them on the field, if you see them bowling, and that is really a very positive aspect about their team because they know they are up against a huge big team like India and they have got them on the back foot. So this is a very interesting match, and also for India it's a good learning because if you have a bad day very early on in a tournament, that's always better. But Team India, of course, needs to get a big victory here as they begin their campaign in this particular Asia Cup. So the last over of this innings coming up, Sri Charani is on strike. Thipacha, who has picked up a wicket, is getting ready to bowl her last over. Left arm round the wicket, a beautiful tossed up delivery, trying to lure Sri Charani into that big shot. Make a mistake, doesn't really connect it well. A dot ball, very, very expensive. It's worth gold, and of course you know how expensive gold is nowadays. Iqbal, this dot ball is actually worth 10 grams, if I could say that. Coming down the track, and the batter misses it, the wicketkeeper misses it, and there should be a bye there for India. Coming down the track, Thipacha anticipated it really very well, kind of fired it under the bat, and the wicketkeeper couldn't really connect. Very difficult situation here for wicketkeepers to kind of collect that. She was disappointed, and wicketkeeping, overall fielding has been brilliant for Thailand. 147 for 9. Last over is in progress. Can India go beyond 150? Last pair in the middle. Coming down the track, Kranti has hit it high in the air and it goes all the way. Half a dozen runs to get the 150 up. Kranti Gaud with her shot over long off. That is a sign of confidence. 153 for 9. A good shot coming after quite some time.
0: बिल्कुल, और अच्छी खासी गेंदें खेलने के बाद भारत को एक बाउंड्री मिली है और ये छक्का, और जो रिकॉर्ड का आप जिक्र कर रहे थे कि भारत का 148 उच्चतम स्कोर रहा है थाईलैंड के खिलाफ T20 में, चलिए उसको तो भारत ने पार कर लिया है।
1: 153 for 9. Once again coming down the track, couldn't kind of come under that ball, drives it towards long on. Kranti, she will get a single and she will take India to 154 for 9. With the kind of score India had after 10 overs, 200 was the forecast on the cards, but there was a sort of an El Nino effect in between in the last 10 overs in terms of runs, and the monsoon of runs wasn't really good for India in the second half of the innings, and they are at 154. For 9. In fact, good shot, past the bowler, won't trickle all the way. The fielder is there at long on, Chanida, and Sri Charani will get a single. Doesn't matter, last ball of the over. Both these girls have done a very, very good job in terms of not losing the wicket and at least playing out the entire 20 overs and getting India mainly past 150. 155 for 9. Last ball coming down the track, nicely hit over the covers. Good shot there. One bounce into the fence. Kranti does the needful. A six and a boundary in this over.
2: and India end up with 100

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है और हम हाजिर हैं फ्री हिट 20 लेकर। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त गौतम, तो खिदमत में हाजिर है। और व्हाट अ मैच, 159 पहली इनिंग की बात करें, और हम कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन करके चल रहे थे कि अब की बार कहीं ना कहीं 200 के पार जरूर। लेकिन मेरा साथ देने के लिए और चर्चा करने के लिए कुछ ऐसे लोग आ गए हैं एक बार फिर से, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है नहीं। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर लतिका कुमारी हमारे साथ हैं, एंड बहुत ही वरिष्ठ स्पोर्ट्स पत्रकार मिस्टर राकेश थपलियाल हमारे साथ हैं, और मेरी को होस्ट मेघा भी हैं। शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, शुरुआत की बात करें वो रन आउट, और उसके बाद दो बड़े रन आउट, और 13वें ओवर के बाद कैसे थमी। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी क्रम पर थोड़ा सा विराम जरूर लग रहा था, लेकिन हाँ फाइनली एक सम्मानजनक स्कोर जरूर है। लतिका जी,
1: देखिए मैंने पहले भी कहा शो में कि ये एशिया कप बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है अगर भारतीय टीम के दृष्टिकोण से हम देखें, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से T20 क्रिकेट हम इतना बेहतर अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं, तो ये टूर्नामेंट में आप देखना चाहेंगे कि आपके बल्लेबाज गेंदबाज किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। और रही पावर प्ले की बात, अच्छा एक स्टार्ट मिला स्मृति मंदाना से और शेफाली वर्मा से जो उन्होंने हिट्स लगाए, लेकिन मुझे लगता है कैजुअल अप्रोच की वजह से जो विकेट गवाया स्मृति ने और उसके बाद लगातार जो आपके विकेट गिरे हैं उसकी वजह से आज ये टोटल जो 170 75 या 180 के आसपास भी हो सकता था वो कहीं ना कहीं 160 तक सिमट के रह गया।
0: शुरुआत काफी अच्छी दी गई, शेफाली वर्मा की अगर बात करें तो हाँ कंसिस्टेंट रही है, लेकिन गड़बड़ कहाँ पर हुई, कहाँ पर आपको लगता है कि जिस स्कोर कार्ड की हम बात कर रहे थे वो शायद और भी विशालकाय हो सकता था।
2: देखिए एक तो स्मृति मंदाना का शुरुआत में रन आउट होना, कैजुअल आपने लिया कि भाई डायरेक्ट हिट नहीं हो पाएगी, एक कॉन्फिडेंस उनको था अपने ऊपर, फील्डर्स के ऊपर नहीं था, लेकिन जिनके साथ आप कम खेलते हैं वो ऐसे ही आपको चौंकाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज है प्लेयर्स की, नहीं लग रहा था कि वो इस तरह की बेहतरीन थ्रो कर सकती होंगी, लेकिन वो उन्होंने की। वहाँ से हमारा थोड़ा सा बैड पैच शुरू हो गया, और उसके शेफाली वर्मा ने अच्छा किया, लेकिन आप देखो कि आप किस तरह का जो शॉट सिलेक्शन है, शेफाली वर्मा हरमनप्रीत कौर जिस तरह से इजी कैचेस उन्होंने खेले, जिस तरह के जो शॉट्स खेले, वो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस तरीके के शॉट्स खेलेंगे। तो बहुत ही ईजी, पहले जो बड़े शॉट्स लग रहे थे उसमें वो आउटफील्ड में कैच पकड़ते हुए नजर नहीं आ रही थी फील्डर, ऐसा लग रहा था कि इनको कैच पकड़ने की कला में महारत नहीं है, लेकिन जब आपने इतने इजी कैच दे दिए, बॉलर के हाथ में दे दिया, दूसरे फील्डर्स को इतने इजी कैच दे दिए, तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। तो ये मुझे लगता है कैजुअल अप्रोच जो रही, पहले 10 ओवर में आपने बना लिए 100 रन तो उससे आपको लगा कि भाई हम तो डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है वो बहुत ज़बरदस्त थाईलैंड की टीम ने, और ये दिखाया उन्होंने कि क्यों वो इसके जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था उसमें क्यों वो चैंपियन बने हैं। यूएई जैसी टीम को फाइनल में उन्होंने हराया, उनके बॉलर्स बड़े नाम भले ही वैसे ना हो लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, स्पिनर्स ने खासतौर पे बड़े अच्छी गेंदबाजी की, लेग स्पिनर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट लेना और 2 बार एक एक ओवर में 2-2 विकेट, आपने क्रिकेट में कहा जाता है नेवर लूज 2 क्विक विकेट्स,

0: वो फार्मूला जो है शायद इनके दिमाग से उतर गया हमारी खिलाड़ियों से, दो दो विकेट गए। और जो नए खिलाड़ी हैं जिनको जैसे मौका, प्रतीका रावल ने थोड़ा अच्छा किया लेकिन आउट बड़े खराब ढंग से हुई, जो प्रेमा रावत हैं वो जिस तरीके से आपने पिच में आप आगे निकल आए, उस समय जरूरत नहीं थी उस चीज की, जब आपके विकेट्स गिर रहे हैं थोड़ा सा आपको रुक के चलना चाहिए। क्रिकेट में देखो रन बनाना एक अलग बात होती है लेकिन हाउ टू बिल्ड द इनिंग्स सबसे बड़ी चीज ये होती है। पारी को संवारने की कला अगर आपके अंदर नहीं आएगी तो वही होगा जो आज यहाँ भारतीय टीम के साथ हुआ।
1: बिल्कुल, इट टर्न्ड आउट टू बी अ टेल ऑफ टू हाफ्स विद इंडिया स्कोरिंग 101 फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट्स इन द फर्स्ट 10 ओवर्स एंड देन सब्सिक्वेंटली जस्ट मैनेजिंग 58 फॉर 7, ऑल्दो ऑब्वियसली क्रेडिट टू द टेल एंडर्स फॉर इंश्योरिंग लतिका कि भारतीय टीम ने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी की।
2: देखिए 20 ओवर बल्लेबाजी तो यहाँ पर करी लेकिन मैं गेंदबाजी की तारीफ ये करूंगी कि उन्होंने एक ही लाइन एंड लेंथ में गेंदबाजी की है। भारतीय बल्लेबाजों को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया बड़े शॉट्स खेलने का। जरूर शुरुआत अच्छी रही भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से शेफाली और स्मृति से, लेकिन उसके बाद लगातार परेशान किया, डॉट बॉल्स का प्रेशर बनाया जिसका शिकार हरमन भी हुई गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से। आगे आने वाले जो बल्लेबाज हैं उन बल्लेबाजों को भी तकलीफ हुई रन बनाने में, और ये क्रेडिट जाता है इनकी गेंदबाजी पे, इनकी फील्डिंग एफर्ट्स पे, जिस तरीके के कैचेस लिए, डायरेक्ट हिट्स लिए, तो एक दिखाता है कि ये टीम आपको इतनी आसानी से रन नहीं बनाने दे रही है। तो अब ये कंपटीशन, अब ये देखना होगा कि बल्लेबाजी में आके ये लोग क्या करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ चिंताएं यूं की यूं बनी हुई हैं भारतीय टीम के लिए जिससे ये पार पाना चाहते होंगे। तो होप फॉर द बेस्ट, एंड अभी एक और पार्ट बचा है इस मैच का, हम उसको देखेंगे वो किस तरीके से।
3: बिल्कुल, चिंता के विषय की आपने बात यहां पर की और कहा कि प्रेशर में बिखरे नहीं निखरे। एक मोड ऐसा भी आया था जब ऋचा को शायद वो स्टेज सेट करने का मौका मिला था, वहां पर भी गड़बड़ हुई कहीं ना कहीं, और ये क्वेश्चन मार्क हमेशा से लगा हुआ है कि वो जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ती है ऐसे मोड।
0: बिल्कुल, आपने आते ही पहली गेंद से इस तरीके का वो जो शॉट खेला है वो उससे ऋचा घोष से वैसी उम्मीद नहीं आपको की जाती, आपने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। देखिए बॉलर्स का, फील्डर्स का जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला काम वो हमारी बल्लेबाजों ने किया है। वो तो 10 ओवर में पूरी तरह से डाउन आउट हो चुके थे, हमारा बड़ा स्कोर, मैंने देखो आपको पहले भी कहा था कि जो इनिंग खेले वो एंड तक लंबी इनिंग जाएगा अगर एंड तक आपका शुरुआती बल्लेबाज टिकेंगे। अगर एंड के ओवर्स में, लास्ट 5-6 ओवर्स में आपके नए बल्लेबाज आएंगे तो आपको रन बनाने में दिक्कत आएगी, आप बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाएंगे। लेकिन शफाली ने जिस तरीके से इनिंग खेली, बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली, जितनी तारीफ हो उतनी कम है, लेकिन जिस तरीके से वो आउट हुई उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। वैसी उम्मीद मतलब नहीं की जाती थी कि इस तरीके से आउट होंगी। जो कप्तान हरमनप्रीत ने जो बैड शॉट खेला इस तरीके से, वैसी उम्मीद उनके साथ नहीं थी। लेकिन इन बॉलर्स की भी तारीफ करनी होगी, इन्होंने, स्पिनर्स ने ज़्यादा तेज फेंकने के बजाय बॉल को धीमा रखा, हवा में ज़्यादा लटकाया, वेरिएशंस के साथ की, कोई कोई बॉल उन्होंने इस तरीके से की जो ज़्यादा बाउंस उस पर पिच पे नहीं आया, तो उनको उस वेरिएशंस का फ़ायदा मिला। और एक लाइन पे स्टिक करना, एक कम अनुभवी गेंदबाज जो होते हैं जिनको ज़्यादा इंटरनेशनल का अनुभव नहीं होता और एक बड़ी टीम के खिलाफ जब खेल रहे होते हैं तो बड़ी हिम्मत चाहिए बॉलर्स के अंदर, खासतौर पर स्पिनर्स के अंदर, वो भी T20 में। बहुत हिम्मत इन गेंदबाजों ने दिखाई है कि जिस तरह की बिल्कुल विकेट टू विकेट उन्होंने गेंदबाजी की। शुरू में ठीक है थोड़ा बहुत वेवर्ड रहे वो उनके फास्ट बॉलर्स को भी शॉर्ट पिच गेंदें की, क्योंकि आजकल शॉर्ट पिच गेंदों पे ही लोग विकेट लेते हैं, फास्ट बॉलर्स का तो एक फंडा ये बन चुका है, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो वुमेंस क्रिकेट हो, कि आप शॉर्ट पिच फेंकते रहो कितने मारेगा कोई, एक आध तो उठ ही जाएगी ना कैच, तो वो वाले उस पर अच्छे रन बनाए। लेकिन जो बैड शॉट सिलेक्शन है वो भारत को बहुत नुकसान दे गए।
3: लियोम ने कमाल तो किया, 3 बड़े विकेट लिए, लेकिन यहाँ पर जिनका डेब्यू हुआ उनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रतीका रावल, एक बड़ा शॉट जरूर देखने को मिला।
0: नहीं, प्रतीका रावल ने देखो अच्छी की, एक अच्छी साझेदारी उन्होंने लगाई है शफाली वर्मा के साथ, अक्षतीय साझेदारी करना आसान नहीं, अच्छा किया। लेकिन क्या होता है कि आपको जब आप टिक गए तो आपको लंबी इनिंग खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो उसमें कहीं ना कहीं कमजोर रह गए। और जब लगातार विकेट आपके गिरने लगते हैं तो जो विपक्षी टीम है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप बहुत बड़े नाम हैं, थाईलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो इतने बड़े नाम नहीं है, उनके लिए, उनके गेंदबाज के लिए स्मृति मंदाना को आउट करना बहुत बड़ी बात, उनके फील्डर्स के लिए डायरेक्ट हिट, ये बार बार चीजें दिखाई जाएंगी, लोगों के जहन में रहेंगी। स्मृति मंदाना भी आज रात को सो नहीं पाएंगी कि किस तरीके से डायरेक्ट हिट इस तरीके से लगा है, वो बड़ा हर्ट करता है किसी भी प्लेयर को। दीप्ति ने खुद अपनी कॉल पे जाके, आप रन आउट हो गए, आप बॉल को देखने लग गए, फील्डर को देखने लग गए, आपने अपने उस पे रन पे ध्यान नहीं दिया कि मुझे अपना एरिया कवर करना है। वो ये ऐसी छोटी छोटी

0: चीजें हैं जो बताया जा रहा था भाई कैंप में छोटी छोटी चीजों को पकड़ा है, तो ये तो बल्लेबाजी में लग रहा है कि भाई छोटी छोटी चीजों पे अभी और बहुत काम करने की जरूरत है।
1: जी बिल्कुल, और इसी तरह से अपनी छोटी छोटी चीजों पर काम करते हुए थिपाचा हाईएस्ट विकेट टेकर T20 आईज की उन्होंने आज भी प्रभावित किया आपने लेफ्ट आर्म स्पिन से।
2: बिल्कुल, देखिए कोई भी गेंदबाज होता है और गेंदबाजी जब वो करता है तो ये देखा जाता है कितना कंसिस्टेंटली वो विकेट ले रहा है, रन्स नहीं दे रहा है, बल्लेबाजों को कितना प्रेशर में लेकर आता है। और देखिए इसी की बदौलत वो आज हाईएस्ट विकेट टेकर है T20 में। और आज इस मैच में भी उन्होंने शो किया कि गेंदबाजी जब आप करते हैं तो एक कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एक लाइन लेंथ कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि बल्लेबाज को आप उनके शॉट्स ना खेलने दें। तो मुझे लगता है कि पूरी ही टीम के जो भी गेंदबाज रहे हैं बहुत ही अच्छा कमबैक किया है उन्होंने, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, प्रतीका रावल को आज ये मौका मिला था, वो पूरा एक लंबा यहाँ से खेल सकते थे, 20 ओवर्स पूरे खेल सकते थे क्योंकि एक शुरुआत जरूर मिल चुकी थी प्रतीका रावल को, और एक कॉन्फिडेंस भी दिखा था जिस तरीके से उन्होंने सामने एक बड़ा हिट भी लगाया था। तो मुझे लगता है कि वही बात है कि छोटी छोटी चीजें जो हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं उनको और आपको एग्जीक्यूशन में लाना बहुत जरूरी है।
3: खासकर हम अगर रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट की बात करें और अब सेकंड इनिंग की तरफ जब हम जाएंगे, तो ऐसे में दीप्ति का कंट्रीब्यूशन और श्री चरनी का कंट्रीब्यूशन कितना अहम होना चाहिए पावर प्ले में?
0: देखिए बड़ा अहम रहेगा, जैसे उन्होंने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ शुरुआत की, तो आपको जो एक ओवर फास्ट बॉलर से कराया, सेकेंड ओवर उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर से कराया, तो मुझे लगता है यहाँ हमारे साथ भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है कि स्पिनर शुरुआत में ही लगें और पावर प्ले में ज़्यादा ओवर उनको मिल जाए करने को। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अब बेहतरीन फील्डिंग करनी होगी और विकेट चटकाने की तरफ जाना होगा। अगर आप शुरुआत में विकेट नहीं लेंगे, कमबैक तो देखिए कर सकते हैं, इन्होंने भी कमबैक किया, कहा जाता है T20 में कमबैक नहीं होता, लेकिन कमबैक हुआ है थाईलैंड का ना, तो यहाँ हमारा भी हो सकता है, लेकिन हमें अगर स्ट्रांग पोजीशन में रहना है तो शुरुआत में ही हमें विकेट चटकाने होंगे।
3: बिल्कुल, गलती गलत फहमियों में तब्दील नहीं होनी चाहिए, खासकर टेक द कैचेस एंड विन द मैचेस। वो कैच पहले भी छोटे थे, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में हमसे वो गलतियां नहीं होनी चाहिए जो थाईलैंड ने की।
0: कोई भी किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और सबको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा, और उनके बल्लेबाजों को भी हल्का मानने की गलती नहीं करनी होगी।
2: मुझे लगता है कि उनके कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे रन्स बनाते हुए आ रहे हैं, उनके ऊपर खासा ध्यान देना होगा। हमारे जो गेंदबाज हैं, अगर हम मीडियम पेसर्स की बात करें, नंदनी की बात करें, क्रांति गौड़ की बात करें, तो पिछले कुछ समय से हमने वो फॉर्म उनकी गेंदबाजी में नहीं देखा है। वो विकेट टेकिंग एबिलिटीज थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी खलती है, रन्स ज़्यादा लीक होते हैं। तो ये सब देखना होगा कि आपने उन दोनों गेंदबाजों को अगर आज के प्लेइंग 11 में रखा है तो क्या हम दोनों को नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए देखेंगे, या एक एंड से हमें पेस अटैक दिखेगा, एक से स्पिन अटैक दिखेगा, ये देखना होगा। लेकिन पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे दोनों ही गेंदबाज देखने कि नई गेंद से वो किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि अगर आप काम करके आए हैं तो ये मैं बार बार कह रही हूँ, एशिया कप एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर कि आप हर चीज को यहाँ एग्जीक्यूशन में लेकर आ सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अपफ्रंट होके उन्हीं दो गेंदबाजों से आप शुरुआत करा सकते हैं इनिंग की।
1: बिल्कुल, और राकेश हमने देखा कि किस तरह से इनिशियल ओवर्स में देयर वाज मूवमेंट अप फ्रंट, हालांकि जैसा आपने मेंशन किया शॉर्ट पिच डिलीवरी कर रही थी पेसर्स, इसलिए उतना मूवमेंट को भुना वो नहीं पाए।
0: नहीं बिल्कुल, और हमारी जो बल्लेबाज है ना वो देखिए शॉर्ट पिच गेंदों पे बहुत अच्छे, चाहे वो स्मृति मंदाना हो, शेफाली वर्मा हो, बड़े अच्छे पुल शॉट्स लगाने में वो महारत थी, और ऑफ साइड की गेंदों पे भी आजकल बढ़िया पुल शॉट लोग लगाते हैं, तो सही लाइन और लेंथ में वो होना चाहिए। लतिका ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपके पास फास्ट बॉलर्स हैं तो आपको शुरुआत में उनके साथ दो दो ओवर तो कम से कम जाना चाहिए।
3: बिल्कुल, और वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, और खासकर ऐसी पिचेस की अगर हम बात करें, दुबई स्टेडियम की बात करें, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अब सेकंड इनिंग में आपकी?
0: देखिए ये पहला मैच होता है किसी भी टीम का जब किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के अंदर, तो थोड़ा सा एक पिच को लेके होता है कि जब तक आप खेले नहीं, प्रैक्टिस पिचें एक अलग तरह की होती हैं और जब आप मेन पिच के ऊपर खेलते हैं तो एक अलग तरीके की चीज़ आपको मिलती है, तो आज थोड़ा सा एहसास होगा, पिच का अंदाज़ा हमारी बल्लेबाजों को हो गया होगा, सब अनुभवी हैं, और मुझे लगता है कि अब वो जो गेंदबाजी है उन्हीं की तरह से सही लाइन और लेंथ की बॉलिंग आपको करनी होगी और विकेट लेने की तरफ जाना पड़ेगा। अगर 20 ओवर पूरे खोलेंगे तो हो सकता है वो आपको मैच में हरा भी दें।
3: बिल्कुल, टेल एंडर्स, ये सवाल कहीं ना कहीं आज आया है, लतिका मैम, तो आपको लगता है कि शुरुआत अगर आप सही कर लेंगे, ओपनर्स को थोड़ा सा सेटल डाउन नहीं होने देंगे, तो जाहिर सी बात है स्कोर कार्ड इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके चलना पड़ेगा आपको।
2: देखिए T20 का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि आपको विकेट लगातार अंतराल में लेनी होगी, तभी आप कामयाब रहते हैं किसी भी मैच को जीतने के लिए। तो यह उम्मीद यही है कि क्रांति गौड़ किस तरह की गेंदबाजी करेंगे और नंदनी कैसी गेंदबाजी करेंगे, और अब मैच की शुरुआत होने जा रही है, तो देखते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन हम आगे देखने वाले हैं।
3: बिल्कुल, और मुलाकात होगी आपसे फिर, और ये T20 का महासंग्राम है, अनिश्चितताओं का ये खेल है, फिर से हाजिर होंगे।

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भारत और थाईलैंड के बीच विमेन्स एशिया कप का मुकाबला इस वक्त चल रहा है, जहां पर भारत ने 160 रन का लक्ष्य दिया है थाईलैंड को, और इस वक्त थाईलैंड की दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर हैं और थाईलैंड अपनी पारी की शुरुआत कर रहा है। क्रांति गौड़ गेंदबाजी करती हुई, और क्रांति गौड़ गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं और सामना करने के लिए एक बार फिर से तैयार होती हुई बल्लेबाज। इस बीच क्रांति चली, अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और इस बार इस गेंद को बेहतरीन कट किया और गेंद जाती हुई कवर बाउंड्री के बाहर, चार रन। शानदार स्ट्रोक, खाता खुलता हुआ इस चौके की मदद से थाईलैंड का। तीन गेंदें हुई हैं पहले ओवर में, और इस गेंद को जो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ थी ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को कट किया और गेंद दनदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रनों के लिए। क्रांति गौड़ एक बार फिर से तैयार हो रही हैं और सामना करने के लिए तैयार हैं नताकन चांतम इस ओवर की चौथी बॉल के साथ। भारत ने 160 रनों का लक्ष्य दिया है थाईलैंड को मुकाबला जीतने के लिए। क्रांति एक बार फिर से चली दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, और इस बार धीमी रफ्तार की गेंद अंदर आई। इस गेंद को चांतम ने सुरक्षात्मक ढंग से खेल दिया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। भारत ने निर्धारित 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 159 रन बनाए, और 160 रनों की चुनौती इस वक्त दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर थाईलैंड के सामने। अगली बॉल, बल्ले का अंदरूनी किनारा, और इसी के साथ चांतम प्लेड ऑन, भारत को पहली कामयाबी। नताकन चांतम ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर गेंद थी, ड्राइव करने के लिए गई और गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लग करके स्टंप पर चली आई, मिडिल स्टंप पर जाकर गेंद हिट करती हुई, और इसी के साथ भारत को पहली कामयाबी। मात्र 4 की रन संख्या पर थाईलैंड ने अपना पहला विकेट गंवा दिया है। भारत ने पहली कामयाबी पहले ही ओवर में हासिल कर ली है। इस लाइव कमेंट्री के साथ मैं हूं मोहम्मद इकबाल, अपने साथी कमेंटेटर पंकज अठावले, स्कोरर रजित सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन ओपी शर्मा के साथ। स्वागत करते हैं पंकज का, बहुत बहुत स्वागत पंकज।
2: Thank you, welcoming me with a wicket, and that was the swag of Kranti. In fact, Chantham played that square cut in the earlier delivery really very well, very stylish shot, and she was looking very confident, this time not getting her foot movement, not getting the leg to the pitch of the ball and missing it. But Kranti Gaur has got a big, big breakthrough, and as our experts also were speaking about in the mid innings show, they mentioned that India can't really allow Thailand to play all the 20 overs, they have to get them out, and a good start there for India.
1: तो भारत को पहली कामयाबी बहुत जल्द मिली है, और जिस तरह का खराब प्रदर्शन भारत ने अपनी बैटिंग के दौरान आखिरी 10 ओवर में किया था, ये बहुत जरूरी था कि भारत अपनी गेंदबाजी में अच्छी शुरुआत करे, और अच्छी शुरुआत क्रांति गौड़ ने करा दी है। इस बीच अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को अपरकट के अंदाज में खेल दिया और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, चार रन। आखिरी गेंद पर चौका, और इसी के साथ ये स्कोर 8 रन हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद। नन्नापत कोंचो रोइंकाई
2: yes.
1: इनका नाम है बड़े मुश्किल नाम है थाईलैंड के खिलाड़ियों के, नन्नापत कोंचा रोइंकाई।
2: Yes, and Iqbal, we of course as commentators have been working extremely hard to get it right, and we hope we have got the pronunciation of the names of all the girls right. And Thailand, of course, as we welcome them at this big stage, they have done a phenomenal job by restricting India to 159, but then Nanapath and Maya Panita at the other end will have the task cut out. It looks very clear that they are targeting the power play. Nandini Sharma will be bowling from the other end. Now, this is the end from where the ball keeps a bit low. Now, Maya Panita is a young batter, an all-rounder. She would like to go all guns blazing. With a slip, here comes Nandini. First ball right on the money, on the stump. Very compact. and played defensively by Maya Panita. In fact, the wicket that Kranti Gaur got in the earlier over was very, very important, because the fact remains that Nanapat Chantham was their top-notch player, and she is back in the pavilion. Maya Panita right now on strike, and a very interesting all-rounder. We'll talk about it as a bit of an outswing there for Nandini, and Thailand are 8 for the loss of a wicket. Very rarely we see a player who opens the bowling as well as the batting. Of course, we remember Manoj Prabhakar doing that. In fact, Neil Johnson from Zimbabwe, I remember doing that. And Maya Panita, now we have one of the options. So cricket gives us an opportunity to get you some trivia, some observations from the past. And Maya Panita joins that list. Drives it, edged through gully. And the ball will trickle towards the third boundary. And Maya Panita opens her account with 4 runs. For Thailand, it doesn't matter how the runs come, but if they're able to get a good amount of runs in the power play, then they can sort of build on that foundation and see whether they can travel all the way to 160 runs and create an upset or not. But the Dubai International Stadium has seen a lot of upsets. It has seen a lot of great matches. About 37, 38 degrees is the temperature out there. The girls are really giving their best. It's a test of their physical and mental ability, as Harman gets the second slip in place because of that edge on the earlier over. In the early delivery, beg your pardon. Nandini bowled the first two deliveries, which are a dot ball. And she's a very good run-up and a good action. Natural outswinger. On the legs, works it towards the mid-wicket zone and picks up a quick single. A direct hit. So the Indian fielders are also getting those direct hits, but this time no chance of a run out. But Nandini Sharma is a good addition to the Indian bowling lineup, because nice, tall, lanky, good action, gets the ball to swing away, and gives good compliments on the other side to Kranti Gaur. But the second slip has been taken off because Nanapat is now on strike. The second slip has been moved to short third. There's a first slip. And it's going to be interesting how Nanapat now approaches this particular over. Slightly short, nicely played towards deep point for a single. Important here for Thailand batters that they keep getting the runs either through singles or doubles or through boundaries. But make sure you're getting 6 runs per over, and then look out for the bad deliveries. Also, Iqbal, it's going to be interesting to see which Indian bowlers do the Thailand batters target, because they'll have to pick up one or two bowlers from the Indian lineup so that they can kind of get that acceleration towards the target of 160. Last ball of the over. Maya Panita is on strike, waits for it, lets it swing away, judges it. Jovial young girl, smiles all around, and end of over number 2, 14 for the loss of 1 wicket, Thailand.
3: जिस तरह से ननपत की बल्लेबाजी है और जिस तरह से आते ही उन्होंने थोड़ा सा इंटेंट दिखाया है, निश्चित तौर पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बल्लेबाज के द्वारा कुछ तेज रन बनाने की कोशिश होगी. हालांकि भारतीय टीम की तरफ से प्रयास यही है कि थाईलैंड को जितना कम हो सके उतने रनों में आउट किया जाए, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से भारतीय टीम की यहां पर गेंदबाजी चलती है. आज भारत अपना पहला मुकाबला खेल रहा है. दूसरे मुकाबले में 3 सितंबर को भारत का मुकाबला हांगकांग चाइना से होगा. इस बीच नए ओवर की शुरुआत. पहली गेंद रूम बनाकर खेलना चाहा, गेंद हवा में, इधर रनआउट का भी खतरा था. सीधा थ्रो स्टंप पर लगा है. कैच तो हुआ नहीं, लेकिन शेफाली वर्मा ने गेंद को उठाकर स्टंप पर मार दिया नॉन स्ट्राइकर एंड पर. और ऐसे में तीसरे अंप

0: अंपायर की तरफ इस वक्त इशारा किया गया है। गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद हवा में लहराई थी, मिडॉन पर खड़े हुए फील्डर ने कोशिश की और ऐसा लग रहा है कि बल्ला शायद बाहर ही रह गया है खिलाड़ी का। गेंद जब स्टंप पर लगी, बेल्स जब ज्वलित हो उठी, उस समय क्या बल्ला क्रीज के बाहर है या अंदर है, ये तीसरे अंपायर को थोड़ा सा स्लोमो में देखना होगा। ये जस्ट गेंद जब लगी है, बल्ला शायद उसी वक्त अंदर की तरफ आ गया है, लेकिन अभी भी जो मोशन, जिस मोशन में देखा जा रहा है, शायद वो करेक्ट नहीं है, स्लोमो में देखना होगा। और इस वक्त तीसरे अंपायर के द्वारा इस वक्त देखा जा रहा है, नजदीकी निगाह डाली जा रही है और ऐसा लग रहा है कि तीसरे अंपायर का निर्णय बल्लेबाज के पक्ष में जाएगा और नॉट आउट का ही निर्णय आता हुआ तीसरे अंपायर का। अच्छी कोशिश वहां पर फील्डर के द्वारा, शिफाली वर्मा के द्वारा। फिलहाल अगली बॉल के साथ चली क्रांति गौड़, ये गेंद बल्ले का किनारा, स्लिप में दीप्ति शर्मा ने कैच छोड़ दिया। दीप्ति शर्मा के लिए एक आसान सा कैच, कमाल की गेंदबाजी क्रांति की। माया ड्राइव करने के लिए गई, बल्ले का जेन्युइन एज और स्लिप में हाथों में आया हुआ कैच छोड़ दिया। अगली गेंद लेग स्टंप पर फुल टॉस, घुमाया ऑन साइड में, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है। एक रन मिला और इसे एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब 16 रन एक विकेट के नुकसान पर थाईलैंड का। आसान सा मौका, आसान सी यहां पर अपॉर्चुनिटी हाथ से जाती हुई, और फर्क दिखाई दे रहा है जो एनर्जी और कमाल आज थाईलैंड ने फील्डिंग में किया, वो भारत ने शुरुआती ओवर्स में ही ठीक उसके उलट किया, एक आसान कैच छोड़ा। अगली गेंद एक्स्ट्रा बाउंस, इस बार इस गेंद पर सकपकासी गई नन्नापत और गेंद को उन्होंने खेलने की कोशिश में कामयाबी हासिल नहीं की, गेंद गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। थाईलैंड का अगर हम जिक्र करें तो T20 क्रिकेट में इस गेंद के बाद जिक्र करेंगे। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कट किया, पॉइंट पर फील्डर, कोई रन नहीं। T20 इंटरनेशनल्स में थाईलैंड का जो उच्चतम स्कोर है वो 259 रन है, चार विकेट के नुकसान पर। सिंगापुर के खिलाफ ये रन इन्होंने बैंकॉक में बनाए थे 2025 में। लेकिन अगर भारत के खिलाफ जिक्र करें तो भारत के खिलाफ उनका जो उच्चतम स्कोर है वो 74 रन, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन भारत के खिलाफ रहा है। इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई, बैकअप फुल एंड डिलीवरी, कट करने के लिए गई, चूक गई बल्लेबाज, गेंद चली गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, अंपायर ने किसी वाइड का इशारा नहीं किया। ओवर समाप्त हुआ, तीन ओवर के बाद थाईलैंड का स्कोर है 16 एक विकेट के नुकसान पर। तो जो स्टैट इस वक्त पंकज ओपी शर्मा ने हमें प्रदान किया है कि इनका हाईएस्ट टीम टोटल तो 259 रन है, लेकिन अगले ही पल उन्होंने आसमान की बुलंदियों को जमीन पर लापटक दिया। और ये भी बताया ओपी शर्मा जी ने कि भारत के खिलाफ उनका उच्चतम स्कोर 74 रन है।
1: Yes, of course, this is good news for the Indian fans, but you never know. The funny game called cricket, and that too the shorter format of the game. 16 for the loss of a wicket, Thailand after three overs, and Nanapat and Maya Panita there in the middle. And luck definitely favors the brave, and Thailand today have got that slice of luck. They had it when they were bowling and fielding, and even now when they are batting, as Nandini gets ready for the next over. And in fact, it's been caught. What a catch! Driven towards point by Maya Panita. She can't get it over there by Pratika Rawal. She jumps up in the air and plucks that ball out of thin air to take that catch as India take the wicket. Nandini gets a wicket on her very first ball. Look at the antithesis. Deepti Sharma dropped a regulation catch in the earlier over and slip, and there Pratika Rawal jumping up at the right moment, timing it right at point as Maya Panita wanted to drive it uppishly. These are the power play conditions, and Thailand

0: विकेट के ऊपर से और चौका मिलता हुआ ननपत को। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बावजूद भी मिड विकेट को क्लियर करने में कामयाब हुई, वरना ये कैच हो सकता था। इस बीच इस चौके के साथ स्कोर 29 दो विकेट के नुकसान पर। पांचवां ओवर चल रहा है, क्रांति गौड़ चली, अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, लेकिन शॉर्ट थर्डमैन पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। इस वक्त एक खिलाड़ी स्लिप में नजर आ रहा है, वो खिलाड़ी हैं दीप्ति शर्मा, जो कि स्लिप में इस वक्त फील्डिंग कर रही हैं। एक कैच उन्होंने छोड़ा है, 160 का लक्ष्य भारतीय टीम ने दिया है थाईलैंड को। क्रांति गौड़ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में फिर से पुल किया मिड विकेट पर, और गेंद एक बार फिर से गैप में निकलती हुई, चार रन। दो बेहतरीन चौके ननपत ने मारे हैं क्रांति गौड़ को, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी इस बार, और इस गेंद को बढ़िया पुल किया चार रन के लिए। और इस चौके के साथ अब ननपत पहुंच गई हैं 21 की रन संख्या पर, और थाईलैंड का स्कोर 33 रन दो विकेट के नुकसान पर। अच्छा प्रोडक्टिव ओवर ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खिलाड़ी की अगर जिक्र करें, ननपत ने तो 144 टी20 मुकाबले खेले हैं, 298 चौके लगा चुकी हैं ये अपने करियर में। इस ओवर की अगली बॉल के साथ चली गेंदबाज क्रांति गौड़, ये गेंद ननपत के लिए फुल पिच डिलीवरी, बल्ले के जड़ से इस गेंद को खेला ऑन साइड में, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई है, एक रन सिर्फ मिलेगा इस मर्तबा। और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन दो विकेट के नुकसान पर। ननपत खेल रही हैं 21 पर, और अफिसारा स्वांचन राती इस वक्त बल्लेबाजी कर रही हैं 1 पर। एक बार फिर से क्रांति गौड़ इस ओवर में अंतिम बार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद और इस बार स्टंप पर आती हुई, इस गेंद को लगभग खड़े खड़े अपने स्थान पर खेला कवर्स पर, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त हुआ पांचवा, और 5 ओवर्स के बाद थाईलैंड का स्कोर है 34 रन दो विकेट के नुकसान पर। मौजूदा रन गति 6.8 रन प्रति ओवर का है, और रिक्वायर्ड रेट की बात करें तो 8.4 का रिक्वायर्ड रेट है। तो अगर विकेटों पर अंकुश लगाए रखती है थाईलैंड की टीम पंकज, और जिस तरीके से इस ओवर में 11 रन आ गए, दो चौके बड़ी आसानी के साथ मारे, इसी तरह से बाउंड्रीज आती रहीं, रन्स सिंगल्स डबल्स के जरिए आते रहे, स्कोरबोर्ड को चलायमान रखा, तो इस मुकाबले में एक तरह से बने रहने की जो कवायद होती है वो कम से कम कर पाती हुई थाईलैंड की टीम जरूर नजर आएगी।
1: No doubt about it, Iqbal, and the fact remains that the exuberance of the Thai players is very important. Now, Thailand is not really a traditionally cricket-playing nation. They've adapted to the game really very well, and they've really improved and come up and standing up tall to Indian bowlers of international class and hitting them. And Ninapath has shown some real great confidence as Harmanpreet Kaur now gets Sri Charani into the attack. 42 wickets for her, really very good bowler. The Sri Charani 4-12 is a best, and it's going to be interesting how the Thailand batters will tackle the Indian spinners. Now we are talking about which Indian spinner will the Thailand batters target. Is Sri Charani the one? With a slip, left arm around the wicket, here she comes. Ninapath goes for that big sweep, and there is a lot of protection there, deep mid wicket, deep backward square leg. So India is also trying to play to what the Thailand batters would be looking forward to, and the fielding placement is pretty good. But right now Ninapath batting on 23 is the fulcrum for Thailand. She's the pivot around where all the batters will have to work around. Apisara nicely plays it square the wicket, doesn't get runs, but as you said, she has to stand at one end, Iqbal. You're right, she has to just give some good support. Apisara as they call her, you know, she's a very very good all-rounder. Ninapath at the other end batting on 23, Thailand 35 for 2. Sri Charani gets ready to bowl, left arm round the wicket, flatter delivery, thought that Apisara would probably run down the wicket, dance down the wicket for a big shot, But a lot of conversation going on between Nanapat and Apisara. That's good to see that both the batters are communicating, because the pitch is, I wouldn't say really very challenging, but there are certain spots where you got to be careful about. Thailand have a target of 160 runs to win this match. Trying to go across. Big appeal, and as it hits the pad, Apisara deep inside the crease. The appeal took some time for the umpire, but the finger goes up. India pick up a wicket. Sri Chandni picks up a very, very important wicket. Kept Apisara locked, cramped inside her crease, stump to stump. And in trying to play across, Apisara was caught right plumb in front. An umpire had no problem whatsoever. So India doing the needful, putting the pressure, and they are getting the wickets. The third wicket falls. Apisara goes for one. She was not looking really very comfortable, but the fact remains that could she have kind of survived there for a bit long, Iqbal, and give some support to Nanapat at the other end. But India pretty much on course with that third wicket.
0: जी हाँ, बिल्कुल. और यही चैलेंज होने वाला है थाईलैंड के लिए. भारतीय स्पिन गेंदबाजी के सामने खास तौर पर उनका टिकना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है. श्री चरणी बहुत कम समय में बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपना एक रेपुटेशन बनाया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और काफ़ी कामयाब रही हैं. अभी तक की जो जर्नी रही है श्री चरणी की, वो बहुत ही कमाल की रही है. और आप जो जो सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं भारत की तरफ से, वो अभी आने बाकी हैं. दीप्ति शर्मा, जिन्होंने अभी अभी एक कैच छोड़ा, वो मैदान पर अभी गेंदबाजी करने के लिए आई नहीं है. तो दोनों स्पिन गेंदबाजों के सामने इतना आसान थाईलैंड के लिए होने वाला नहीं है, लेकिन देखते हैं कि कितना रेजिस्टेंस ये दिखा पाते हैं, कितना यहाँ पर धैर्य दिखा पाते हैं. फिलहाल अगली गेंद इस बार बाहर की तरफ निकलती हुई, चनीदा नई बल्लेबाज हैं, उनको छोड़ती हुई गेंद निकल गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, और ये डॉट डिलीवरी. हालांकि क्या हाइट ज्यादा थी जिस गेंद पर LBW दिया गया, हालांकि बिल्कुल बैकफुट पर धंसी हुई थी क्रीज में बल्लेबाज. अगली गेंद, अफिश खेला लेकिन गैप में, और गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए. शेफाली वर्मा, दौड़ लगाई जरूर उन्होंने लेकिन गेंद का पीछा नहीं कर पाई. एक लकी बाउंड्री आप कह सकते हैं अपिश, लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद निकली और ये चौका मिला आखिरी गेंद पर. 6 ओवर का खेल यानी कि पावर प्ले के ओवर्स खत्म हो गए हैं, और पावर प्ले में थाईलैंड ने 39 रन बनाए हैं और 3 विकेट गंवा दिए हैं. तो निश्चित तौर पर पावर प्ले थाईलैंड के नाम नहीं रहा है, ये पावर प्ले भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा है, पंकज.
1: Yes, but the efforts from the Thailand girls has been pretty good. Now, as we have been constantly saying, if you're targeting or if you have to reach 160 runs, you've got to kind of keep your wickets and play out the 20 overs. But nevertheless, comparatively, India was 65 for one. Shruti Mandana and Shefali gave a good start, and then Pratika and Shefali also had a good kind of a partnership. But Prema Rawat has been brought into the attack, leg spin, leg break bowler, and India would be looking forward to kind of finish this under 100. That will be a good thing, considering the fact that they'll get a good net run rate advantage because of that. So Nanapat is batting on 23 of 15 deliveries. Now she is the one batter that India will have to target.
0: प्रेमा रावत इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए आई हैं. पहली गेंद ऑन साइड में, इस गेंद को टर्न किया, गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग के इलाके में. 1 रन दौड़ करके पूरा किया बल्लेबाज ने, और इस 1 रन की मदद से थाईलैंड का स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर. नानापत के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, और अभी तक उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली भी है. सबसे ज्यादा अगर इम्प्रेसिव कोई बल्लेबाज नजर आई हैं तो वो नानापत नजर आई हैं. बहुत ही शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की है. प्रेमा रावत अब गेंदबाजी करेंगी चनीदा को, जो कि 4 रन बनाकर खेल रही हैं. एक चौके के साथ उन्होंने अपना खाता खोला पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर. 7वां ओवर पारी का चल रहा है. रनों की रफ्तार 6.49 रन प्रति ओवर. तो अब से यहां पर हो सकता है, अब देखें कि ज्यादातर स्पिन गेंदबाजी करते हुए नजर आए. इस बीच अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, खेला पॉइंट पर, थोड़ी सी फंबल, फायदा उठा करके रन पूरा करना चाहती थी, लेकिन जब देखा कि दोबारा फील्डर गेंद पर कंट्रोल हासिल कर चुकी हैं। चनीदा ने अपना इरादा बदला और इस गेंद पर कोई रन नहीं। 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर थाईलैंड। टॉस जीता था थाईलैंड ने, पहले बॉलिंग चुनी थी। भारत ने 159 रन बनाए 9 विकेट पर। इस बीच अगली गेंद प्रेमा रावत की, इस बार गेंद जाकर के पैड पर टकराई, लेकिन साफ तौर पर गेंद लेग स्टंप के बाहर टप्पा खा रही है। और ऐसे में एक LBW की जो अपील थी वो उत्साह में ज्यादा और विश्वास में कम। 160 रन का लक्ष्य इस वक्त थाईलैंड के सामने है। थाईलैंड 3 विकेट गंवा करके थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रहा है, लेकिन क्या वापसी कर पाएगी थाईलैंड की टीम? भारत के खिलाफ उनका उच्चतम स्कोर 74 रन ही है, क्या उसको पार कर पाएंगे इस ओवर की अगली बॉल के साथ? चली प्रेमा, फ्लाइटेड गेंद, और इस बार इस गेंद को डाउन द ग्राउंड ड्राइव किया, लेकिन मिड ऑफ पर बढ़िया फील्डिंग कप्तान हरमनप्रीत कौर की। कोई रन बनाने का मौका नहीं है बल्लेबाज चनीदा के पास। चनीदा ने 4 रन बनाए हैं, अच्छी फ्लाइट दे रही हैं प्रेमा रावत। एक बार फिर से तैयार हैं प्रेमा, सामने चनीदा, ये गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को स्पिन के सहारे कवर के ऊपर से उछाला, लेकिन स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन पर है। 1 रन सिर्फ लेने का मौका चनीदा के पास। चनीदा पहुंची अब 5 की रन संख्या पर और स्कोर बढ़ता हुआ थाईलैंड का 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अंतिम गेंद के साथ प्रेमा, सामने है ननापत, ये गेंद, और इस बार ननापत ने इस गेंद को पुल करना चाहा, टॉप एज लगा, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग के आसपास कोई फील्डर नहीं, विकेट कीपर जब तक गेंद को जाती उठाती। 1 रन दौड़ करके ननापत ने पूरा किया। 7 ओवर का खेल इसी के साथ समाप्त हुआ और 7 ओवरों में थाईलैंड ने 42 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। ननापत 17 गेंदों पर 25 रन और चनीदा 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर खेल रही हैं।
1: India seems to be in control, no doubt about it, with the 3 wickets, and the fact remains that the Thailand batters will really have to play something really extraordinary in order to reach that 160 runs target that has been given to them. But it's a good outing for them. And if you look at the Thailand side, their core has been the same for the last 3-4 years. You know, Maya, Nanapat, Chanida, all of them have been playing together for a long time, and that has given them a lot of confidence to come up and take up teams like India, as they are 42 for the loss of 3 wickets and they're chasing 160. Sri Charney now will be bowling to Nanapath, who's batting on 25. This is going to be a very good contest, because Sri Charney will definitely try to fox Nanapath. Will Nanapath continue to be aggressive? A slip in place. Oh, tries to go for that big swing, but then controls and checks a shot, realizing that the length wasn't right. The ball just pops up towards short extra cover. Sri Charney also trying to lure Nanapath into that trap. This is going to be an exciting contest between the two. Flight there, driven, and what happened was Nanapath tried to drive it across, didn't connect. The ball just goes off the boot of Richa Sharma into the slips, where Deepti Sharma is there, and she catches this one. But then it doesn't make much of a difference, because there was no willow which got in touch with the ball. Coming down the track, converting into a full toss, Nanapath will get a single as the ball rolls towards long off. That takes Thailand to 43 for the loss of 3 wickets, and this was expected, Iqbal, because India, with their strong bowling lineup, would have made life difficult for Thailand, and that has been the case. But now Thailand have an interesting opportunity. OP Sharma, our statistician, told us 74 is the highest score against India. Can the first step be going beyond that, and then of course moving towards the target of 160? Going for that big shot, Chanida, high in the air towards mid on, straight into the hands of Smriti Mandhana, who is very, very happy to accept that. In trying to be aggressive, Chanida falls at 5, and Thailand lose their 4th wicket at the score of 43 in the 8th over.
0: और जिस तरीके से विकेटें गिर रही हैं, ननापत को छोड़कर के अगर लगातार उनके साथ ही यूं ही बिछड़ती रहेंगी, तो फिर जो 74 रन उनका उच्चतम स्कोर है, जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं पंकज, उस स्कोर को पार करना शायद इतना आसान नहीं होगा थाईलैंड की टीम के लिए, क्योंकि एक छोर पर आप देखें तो 20 गेंदों पर 26 रन बना करके 100 प्लस की स्ट्राइक रेट इन विषम परिस्थितियों में, जबकि टीम एक छोर पर लगातार विकेट गंवा रही है, वो बनाकर खेल रही है, लेकिन दूसरे छोर पर तू चल मैं आया वाली कहानी चल रही है, एक के बाद एक लगातार विकेटें गिरती चली जा रही हैं।
1: And of course the pressure is 160 runs, Iqbal, because it's a long journey. And what Thailand did was they bowled really very well, and they thought that they could kind of roll over that confidence into the batting.

0: And I think early on, the first wicket was somewhere which was very, very difficult. Nathakan was cleaned up. That was something very important for Thailand, as the new batter is in 43 for the loss of 4 wickets. Naomi Hamilton is the player who has come up for Thailand, and this is going to be an interesting one. Naomi Hamilton has a decent record, and she's come there in the middle order. Eighth over is in progress. Sri Charney bowling with a slip, left arm round the wicket. Good ball. And the way Sri Charney bowls, lovely action. She's a tall bowler, and the kind of angle that she creates, also the fact is she gives a nice flight which comes quite high, and that pushes the batter on the back foot initially. It becomes very difficult, and if she's able to get a bit of turn and bounce, then she becomes very, very difficult to face. Just one run in this over and a wicket for Sri Charney. Hamilton on strike, slightly short, nicely pulled towards the onside, and that will help Naomi to open her account. End of over number 8, 44 for 4, Thailand chasing 160. And of course, 160 is a huge, huge climb like Mount Everest for Thailand. But if they could have got a good start in the power play, and probably they wouldn't have lost the wicket, the first wicket, that probably could have helped them. But nevertheless, cricket is a funny game. The second phase of the game, the next 5 overs, are going to be very crucial for Thailand.
1: जी हाँ, बिल्कुल. और जिस तरीके से विकेटों का पतन रहा है, वो निश्चित तौर पर थाईलैंड के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कोई खुशखबरी तो नहीं है उनके लिए, क्योंकि लगातार अंतराल में विकेट गंवाए हैं. थाईलैंड ने पहला विकेट 4 पर, दूसरा विकेट 16 पर, तीसरा विकेट 35 पर, चौथा विकेट 43 पर. तो रेगुलर इंटरवल में, हर अंतराल में आप देखें तो विकेटें गिरती रही हैं थाईलैंड की, जो कि बहुत अच्छी खबर उनके लिए नहीं है. इस वक्त भारत की सबसे अनुभवी गेंदबाज दीप्ति शर्मा को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए. 150वां मुकाबला खेल रही हैं दीप्ति शर्मा. एक अचीवमेंट है उनके लिए. पहली गेंद के साथ तैयार. पहली गेंद फ्लाइटेड, अंदर आई, पैड पटक रही, एलबीडब्ल्यू की अपील, और इसी के साथ आउट. 150वें मुकाबले को इससे बेहतर और क्या सेलिब्रेट कर सकती थी वो, कि आई और पहली बॉल पर ही विकेट उड़ा ले गई हैं पंकज.
0: Naomi Hamilton pushed on the back foot, crammed for space, a good ball there to start, and plumb in front, and Naomi Hamilton had no clue whatsoever. I think this was one of the easiest decisions for the umpire, as half the Thailand side is back in the pavilion.
1: Naomi Hamilton मात्र एक रन बना करके पटबाधा आउट हुई हैं दीप्ति शर्मा की गेंद पर. तो जो विकेटों का पतन का सिलसिला था, और जिसका ब्यौरा मैं कुछ देर पहले दे रहा था, ये देखिए एक और विकेट एक रन के अंतराल में. तो अगर इस तरह की क्रिकेट खेली जाएगी तो फिर निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि थाईलैंड को अपनी बैटिंग में खास तौर पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि गेंदबाजी उनकी अच्छी है इसमें कोई दो राय नहीं है. फील्डिंग में वो अपना जान झोंकती हैं इसमें भी कोई दो राय नहीं है. लेकिन जहां तक बैटिंग का सवाल है, और अमूमन इस तरह की नई टीमें या जो इतना एक्सपोजर जिन टीमों का नहीं है, उन टीमों के लिए बैटिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है. फिलहाल नए बल्लेबाज ने इस गेंद को पुश किया, ऑलमोस्ट रिटर्न कैच था ये. दीप्ति शर्मा ने अपनी बाईं तरफ डाइव लगाई, लेकिन बाल बाल बच गई हैं बल्लेबाज. और ऐसे में ये विकेट नंबर 6 गिरते गिरते रह गया. अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को ऑनसाइड में पुल किया, शॉर्ट मिड विकेट पर कप्तान मौजूद, कैच कर लिया हरमन ने, और चाइहान आते ही मात्र दूसरी गेंद का सामना करते हुए आउट हो गई हैं. ये छठा विकेट थाईलैंड ने गंवा दिया है 44 की रन संख्या पर.
0: Yes, very difficult for the Thailand middle order to negotiate with someone like a Deepti Sharma. And a simple catch there. Chaihan not really able to get used to this particular track. And another wicket falls. India definitely kind of pressing it up, turning the screws and tightening the grip on this particular match.
1: निश्चित तौर पर, और दीप्ति शर्मा के लिए एक के बाद एक खुशखबरी आ रही है. 150वां मुकाबला पहले ही ओवर में 2 विकेटें ले चुकी हैं, और इन 2 विकेटों के साथ एक बड़ा कीर्तिमान अब उनके नाम के आगे जुड़ गया है पंकज. ये जानकारी दे रहे हैं हमारे स्टैटिस्टिशियन ओपी शर्मा, हमारे स्कोरर रजित सिन्हा के साथ, कि टी20 इंटरनेशनल

माया ने 6 रन बनाए। इसके अलावा सुनी तुरंगा ने 5 रन किए, हैमिल्टन ने 1 रन बनाया, चाईहान ने 0 किए। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो विकेट हैं वो लगातार अंतराल में गिर ही रहे हैं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज कुछ योगदान भी अपनी तरफ से नहीं प्रदान कर पा रहा है, एक्सेप्ट नताकन जिन्होंने की बेहतरीन बैटिंग, बल्कि माफ कीजिएगा, ननापत ने बहुत ही शानदार बैटिंग की है, 26 गेंदों पर 26 रन। लेकिन जैसा आपने कहा कि अब उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है, क्योंकि एक छोर से आपने 6 विकेट गंवा दिए हैं और इसके अलावा कोई खिलाड़ी जो है वो खड़ी नहीं हो पा रही हैं, तो ननापत के ऊपर प्रेशर है। नंबर 3 पर वो आई थी बैटिंग करने के लिए, अभी अपने सामने उन्होंने विकेटें गिरते हुए देखी हैं, तो डेफिनेटली अब उनको भी थोड़ा सा ज़रूर इस बात को लेकर के प्रेशर महसूस हो रहा होगा कि आखिर इस सिचुएशन में करें तो करें क्या, रन के लिए जाएं, रोकें, किसी में भी तो फायदा नजर नहीं आ रहा। रन के लिए जाते हैं, आउट होने का खतरा रहता है और बहुत दूर है मंजिल। अगर रोकते हैं, 4 विकेटें बची हुई हैं, कोई टिकने को तैयार नहीं है, तो बड़ी मुश्किल में इस वक्त ननापत नजर आ रही हैं। वहीं भारत की गेंदबाजी कमाल की रही है, 3 ओवर क्रांति गौड़ ने डाले 21 रन 1 विकेट, नंदिनी शर्मा 2 ओवर 13 रन 1 विकेट, श्री चरणित 2 ओवर 7 रन 2 विकेट, प्रेमा रावत 2 ओवर 1 मेडन 3 रन कोई विकेट नहीं, दीप्ति शर्मा 1 ओवर 1 मेडन और 2 विकेट उन्होंने हासिल किए। तो भारतीय सभी गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है, हालांकि प्रेमा रावत को कोई विकेट नहीं मिला है, लेकिन उनकी गेंदबाजी भी देखें 2 ओवर में 3 रन, 1.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से वो रन खर्च कर रही हैं। तो भारत का पूरा कंट्रोल इस मुकाबले में है, भारत पूरी तरह से नियंत्रण में इस मुकाबले में है। अभी भी 60 गेंदें बची हैं और 60 गेंदों पर 116 रन बनाने हैं, रिक्वायर्ड रेट अब लगभग 12.5 रन प्रति ओवर का हो चला है थाईलैंड के लिए, जो कि बहुत मुश्किल काम है उनके लिए इस टारगेट को अचीव करना। फिलहाल ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक नए ओवर की शुरुआत हो रही है और नंदिनी शर्मा को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। नंदिनी ने एक कैच छोड़ा मिड विकेट पर, अच्छी कोशिश थी, डाइव लगाते हुए हाथ में गेंद लगभग आ गई थी, अगर वो कैच ले लिया जाता तो एक ही ओवर में 3 विकेट हो जाते दीप्ति शर्मा के। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद फुल पिच डिलीवरी, ऑन ड्राइव किया, गेंद जा रही है काउ कॉर्नर क्षेत्र में, तोड़ करके रन पूरा किया बल्लेबाज ने, 1 रन मिलता हुआ लाउमी को और इस 1 रन की मदद से लाउमी का खाता खुला और थाईलैंड का स्कोर 45 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर ये है ये पारी का और नंदिनी शर्मा अपना ये दूसरा बल्कि तीसरा ओवर डाल रही हैं। इस ओवर की अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, धीमी रफ्तार की गेंद को कट किया, गेंद गई है स्क्वायरिश थर्ड मैन पर भारती के पास, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया ननापत ने और इस 1 रन की मदद से ननापत पहुंच गई हैं अब 27 पर। ननापत कोंचा रोयनकाई ये इनका पूरा नाम है, फिलहाल 27 गेंदों पर 27 रन उन्होंने बनाए हैं और इस पारी में उन्होंने 4 चौके मारे हैं। इस ओवर की अगली बॉल नंदिनी की फुल पिच डिलीवरी, बेहतरीन ड्राइव, लेकिन कवर पर स्मृति मंदाना फील्डिंग कर रही हैं, गेंद को उन्होंने बड़ी आसानी के साथ रोक लिया, कोई रन नहीं मिलेगा लाउमी को। 11वां ओवर चल रहा है, नंदिनी शर्मा गेंदबाजी कर रही हैं, मध्यम गति की तेज गेंदबाज हैं और मुझे ये आवश्यकता समझ नहीं आई कप्तान को कि तेज गेंदबाज को क्यों लाना, स्पिनर्स बढ़िया गेंदबाजी कर रही हैं और आपके पास 3-3 स्पिन गेंदबाज हैं, ये रणनीति क्या है, और वो भी लगातार फुल पिच गेंदें हो रही हैं तो बल्लेबाज को कोई परेशानी नहीं आ रही है। अगली गेंद एक और ओवर पिच डिलीवरी, ऑन ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर, 1 रन दौड़ करके पूरा किया लाउमी ने, लाउमी पहुंची अब 2 पर और थाईलैंड का स्कोर 47 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नंदिनी शर्मा को 1 विकेट मिला है, पिछली 30 गेंदों पर थाईलैंड ने मात्र 13 रन बनाए हैं और 4 विकेट गंवाए हैं, बहुत ही खराब प्रदर्शन बल्लेबाजी में रहा है, मुश्किल दौर से उनकी बल्लेबाजी गुजर रही है। इस ओवर की अगली बॉल और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी बैक ऑफ लेंथ गेंद, कट करने के लिए गई बल्लेबाज ननापत लेकिन बीट हो गई, बाहर की तरफ गेंद स्विंग हो रही थी हल्की सी और कोई रन नहीं, बाकी का काम पूरा किया विकेटों के पीछे ऋचा घोष ने। ननापत 27 पर, लाउमी 2 रन बनाकर बैटिंग कर रही हैं, 47 रन 6 विकेट पर थाईलैंड। आखिरी गेंद करने के लिए अब तैयार हैं नंदिनी शर्मा, आगे गेंद पिच कराएंगी शायद मुश्किल होगी, लेकिन अगर थोड़ा बैक ऑफ लेंथ रखेंगी

0: तो वो शायद बल्लेबाज को परेशान कर सके। अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर धीमी रफ्तार की गेंद, गेंद को बड़ी आसानी के साथ कवर पर धकेला, कोई रन नहीं, ओवर समाप्त हुआ 11वां। 11 ओवर के बाद थाईलैंड 47, 6 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त लाउमी 2 पर हैं और ननापत 27 रन बनाकर खेल रही हैं। इस ओवर में 3 रन आए, 3 सिंगल के रूप में, और अभी भी 54 गेंदों पर थाईलैंड को 113 रन बनाने हैं। रिक्वायर्ड रेट अब 12.5 के ऊपर चला गया है। तमाम मुश्किलें थाईलैंड के साथ हैं, लेकिन तेज गेंदबाज को अचानक गेंदबाजी पर लाने की जो रणनीति है पंकज, इसके पीछे कारण आपको कुछ नजर आता है?
1: प्रोबेबली हरमनप्रीत कौर मस्ट बी थिंकिंग द थाईलैंड प्लेयर्स लाइक द बॉल टू कम आउट ऑफ द बैट, इफ दे काइंड ऑफ गिव देम दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी दे माइट गो आफ्टर द बॉलिंग, लूज क्विक विकेट्स एंड दैट माइट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, एंड इंडिया माइट ऑल्सो बी ट्राइंग टू काइंड ऑफ फिगर आउट डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फॉर डिफरेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ द गेम, बिकॉज दे विल बी अप अगेंस्ट हांगकॉन्ग ऑन द 3rd of September, देन दे टेक ऑन पाकिस्तान ऑन द 5th of September, दोज दे विल बी द लीग मैचेस, सो इंडिया प्रॉब्ली ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एज प्रेमा इज बैक इन टू द अटैक, अ लवली फ्लाइट देयर एज शी बोल्स टू लाउमी and Lamy drives it towards mid-off for, in fact, straight to the fielder. So 47 for 6. And in fact, Nathakan, the opening batter, and Nanapat, these are the two mainstays of the Thailand batting order. And out of them, one didn't work. Nanapat is still there as the next ball driven towards sweeper cover by Lamy as she gets Nanapat back on strike. Now, 12th over is in progress. Nanapat will have to decide how long to continue. Will it be worth playing 20 overs or will it be worth going after? Because Thailand batters will have to target some Indian bowler. Will it be Prema? We'll have to see. Oh, good ball. Prema knew that Nanapat will be going for a big one. She was in position for that. But then a lovely flight, fuller length and the ball turning square. Completely, completely surprised Nanapat on that occasion. And that could have been very interesting. So Prema is also working extremely hard and trying to fox the batter. Coming down the track, but Prema just puts it a bit fuller, can't get underneath that ball, and Nanapat has to drive it back to the bowler. Now, Nanapat was playing really very well for the first 25 deliveries that she faced. But now, the dot balls are building up the pressure on her. Will she fall? Will she break down? Or will she retaliate? She retaliates with a lovely pull. Good fielding there by Kranti Gaur at the deep backward square leg region. She saves a definite boundary and Nanapat will get a couple of runs. So Thailand inching in closer towards the half century mark. But they have got the 50? Yes, so they have reached the half century. Thank you to our scorer Rajit Sinha. And overall, there were a bit of hiccups in that second phase when India was batting the middle order, but otherwise things have gone pretty well for India. Coming down the track, driving it towards long on for a single, and Nanapat will keep strike with that single. 12 overs have been bowled, 51 for 6, Thailand chasing 160. So overall, as far as the bowling is concerned, India has done the job, but the middle order batting, a bit of fielding, drop catches, still haunting India, and they will really have to correct this as early as possible, because a bad day later on in the next phase of this particular tournament can be very, very dangerous, and India probably can't afford those kind of mistakes.
0: बिल्कुल सही बात है पंकज, और फिलहाल जो रणनीति थाईलैंड की नजर आ रही है वो ये, पिछले दो ओवर्स में अगर आपने गौर किया हो तो एरियल रूट का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, लगातार जमीन के सहारे स्ट्रोक्स खेल रही हैं दोनों बल्लेबाज, और कोशिश कर रही हैं कि जितना हो सके ओवर्स खेलें भारत के खिलाफ। फिलहाल श्री चरणी आ रही हैं गेंदबाजी करने के लिए, पारी का 13वां ओवर लेकर के सामने होंगी ननापत जो कि 30 रन बनाकर खेल रही हैं। श्री चरणी की फ्लाइटेड गेंद, इस गेंद को खेला ऑफ साइड में और गेंद जा रही है स्वीपर कवर पर, एक रन दौड़ करके पूरा किया ननापत ने, और इस एक रन की मदद से ननापत पहुंच गई हैं 31 पर और थाईलैंड का स्कोर 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12.1 ओवर के बाद भारत का स्कोर 110 रन था 3 विकेट के नुकसान पर, थाईलैंड का स्कोर 52 रन है 6 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल श्री चरणी एक स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रही हैं, लाउमी को गेंदबाजी करेंगी राउंड द विकेट आती हुई, श्री चरणी की अगली गेंद फ्लाइटेड और इस बार बीट किया बल्लेबाज।

0: को विकेट कीपर ने स्टंप्स उड़ा दिए, लेकिन ऐसा लगता है कि सुलिपोर्ण लाउमी का पिछला पैर क्रीज के अंदर मौजूद था और ऐसे में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं बल्लेबाज के ऊपर। लेकिन बढ़िया इस बार टर्न मिला गेंदबाज श्री चरणी को और पूरी तरह से टर्न के सहारे बीट किया बल्लेबाज को। इस ओवर की अगली बॉल के साथ तैयार हैं श्री चरणी। श्री चरणी का ये तीसरा ओवर है, 8 रन देकर के 2 विकेट निकाली हैं इन्होंने। बाएं हाथ से राउंड द विकेट ये गेंद और इस बार खड़े खड़े इस गेंद को खेला ऑफ साइड में पॉइंट क्षेत्र में, 1 रन दौड़ करके पूरा किया बल्लेबाज लाउमी ने और इस 1 रन की मदद से लाउमी पहुंच गई हैं 4 पर और थाईलैंड का स्कोर 53 रन 6 विकेट के नुकसान पर। श्री चरणी लेफ्ट आर्म स्पिनर, बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज हैं, दौड़ती हैं, शुरुआत करती हैं जाडेजा की तरह स्लो और लगभग उसी प्रकार की उनकी उनका एक्शन भी है। अगली गेंद और इस बार तेज गेंद, फ्लैटर ट्रैजेक्टरी, इस गेंद को बैक टू द बॉलर खेला, कोई रन नहीं नानापत को। 31 पर है नानापत। 5वीं बॉल के साथ श्री चरणी तैयार, राउंड द विकेट, स्लिप को अब हटा लिया गया है। अगली गेंद फ्लाइटेड और इस बार इस गेंद को फुल टॉस पर लेना चाहती थी, गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लगकर ऑन साइड में गई। विकेट कीपर ऋचा घोष गई हैं गेंद को उठाने के लिए, लेकिन तब तक दौड़ करके 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर थाईलैंड की टीम का। 2 विकेटें मिली हैं श्री चरणी को, अपने तीसरे विकेट की तलाश में है। आखिरी बॉल तीसरा ओवर अपना डाल रही है। अगली गेंद और इस बार फिर से टर्न और एक्स्ट्रा बाउंस भी था, बीट कर दिया बल्लेबाज लाउमी को और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ 13वां। 13 ओवरों के बाद थाईलैंड का स्कोर है 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नानापत 32 पर 36 गेंदों का सामना किया है, उन्होंने 4 चौके लगाए हैं जबकि लाउमी 4 रन बनाकर खेल रही हैं, 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। रिक्वायर्ड रेट जिक्र करना क्या सही है पंकज, 15 से ज्यादा का अब रिक्वायर्ड रेट हो चुका है।
1: And Thailand, of course, I mean, you can't expect them to really go slam bang against a team like India, but they've done a very good job. It's very encouraging to see that they have kind of held on fort. Now, the challenge for India would be they've got Thailand 54 for 6 after 13 overs. India shouldn't allow them to play 20 overs. Now, that is going to be another very important point as Prema Rawat starts a new over. Quicker, flatter, compact delivery, and Nanapath has to play it back to the bowler. So, the point here remains that can India quickly finish off the tail? Now that's also an art, and that's also an art of making a statement. As Prema Rawat, the leg break bowler, flighted, comes down the track, Nanapat drives it, good dive there by Shri. In fact, Deep Shefali at mid off, she gets a hand to it, otherwise, that was a certain boundary, and a single there as far as Nanapat is concerned. Very important here. In fact, they come back for the second run because the ball trickled towards the boundary line, and Nanapath will have to keep the strike as long as possible, try and go for the big hits because you can't expect the lower middle order to do much. Quicker delivery down the leg side, will it be called as a wide? Was very, very close as Nanapath tried to kind of go on the back foot and pull it. It's not given a wide, very, very close, but a interesting decision. 56 for 6 Thailand. They need 104 runs to win this match. Coming down the track and almost a cotton bowl. Came down the track, found herself in an awkward position, cross-batted straight what Nanapath played, and it almost popped back to Prema. Probably she thought that it would come into her hands all the way, but that was not the case. Pulling that ball from way outside the off stump towards long on for a single. That will take Thailand to 57 for 6. And India probably are doing the right thing, but they need to kind of quickly finish this innings, Iqbal, because letting or allowing Thailand to play 20 overs will not really reflect good on the Indian bowling. Nicely driven, the next ball, which is a flighted one, a square drive, there by Laumi. She will keep the strike at the end of over number 14. Thailand are 58 for the loss of 6 wickets. So Thailand were not really expected to kind of go really very hard initially, score 50, 60 odd runs in the power play. But what they have done is that showing the tenacity to stay there even after 6 wickets have gone. Now, can India finish it off quick?

0: is what we'll have to see, and that will really help sharpen India's bowling for the upcoming matches in this particular tournament.
1: जी हाँ बिल्कुल, और भारत की गेंदबाजी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है पंकज, लेकिन पिछले 5 ओवर और 3 गेंदे यानी पिछले 5.5 ओवर से भारत को कोई विकेट नहीं मिला है। 33 गेंदे ये दोनों बल्लेबाज खेल चुकी हैं, इस जोड़ी ने 33 गेंदों का सामना किया है यानी 5.5 ओवर का सामना किया है, और 14 रन बनाए हैं। रन इतने मायने नहीं रखते यहां पर, क्योंकि रन्स अभी वैसे ही बहुत ज्यादा अब जरूरी हैं, 102 रन चाहिए 36 गेंदों पर, तो थोड़ा मुश्किल अब यहां पर लगने लगा है। इस बीच अगले ओवर की शुरुआत, पहली गेंद हवा में उछाल कर खेला लेकिन स्क्वायरिश थर्ड मैन से पहले गेंद टप्पा खाई है, 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को, तो इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 58, 6 विकेट के नुकसान पर। इस सिंगल की मदद से अब लाउमी पहुंची हैं 6 पर 35 पर, ननपत बैटिंग कर रही हैं। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 5 सितंबर को खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर, और उस मुकाबले की भी कमेंट्री आप आकाशवाणी पर सुन सकेंगे। फिलहाल एक बार फिर से तैयार होती हुई गेंदबाज, ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, विकेट कीपर काफी ऊपर आ गई हैं, उन्होंने गेंद को गैदर किया, बीट हो गई बल्लेबाज इस मरतबा ननपत, और गेंद चली गई ऋचा घोष के दस्ताने में। तो इस साझेदारी ने रन कितने बनाए हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो टिकने की जो एक मंशा दिखाई है, पूरे 20 ओवर खेलने की जो मंशा दिखाई है, वो जरूर उसमें कामयाब नजर आ रही है। नंदिनी इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने है ननपत, ये गेंद और इस बार ननपत ने इस गेंद को घूमकर मारा फाइन लेग क्षेत्र में, गेंद को बाउंड्री लाइन के आसपास रोक लिया गया, और इस दरमियान दौड़ करके 1 रन पूरा किया बल्लेबाज ननपत ने, और इस 1 रन की मदद से ननपत पहुंच गई हैं 36 पर, और थाईलैंड का स्कोर 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर। साझेदारी 15 रनों की हो गई है, 16 रनों की, इनफैक्ट 16 रनों की साझेदारी 36 गेंदों पर, पिछली 51 गेंदों से कोई बाउंड्री नहीं आई है, पिछली 51 गेंदों से कोई चौका या छक्का नहीं लगा है। इस ओवर की अगली गेंद, फुल पिच डिलीवरी, रूम बनाकर खेला कवर्स पर, लेकिन गेंद को इनफील्ड के अंदर रोक लिया गया, कोई रन नहीं। तो साफ तौर पर अब थाईलैंड के खेल से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनकी रणनीति से यही लग रहा है कि वो 160 चेज करने के लिए नहीं जा रही हैं, वो 20 ओवर खेलने के लिए जा रही हैं, और शायद कहीं बैक ऑफ द माइंड किसी सपोर्ट स्टाफ ने या कोई टेक्निकल स्टाफ ने उनको जरूर बताया होगा कि देखिए भारत के खिलाफ आपका उच्चतम स्कोर 74 है, उसको जरूर पार कर लीजिएगा। इस ओवर की अगली गेंद, उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन पर, इस बार आउट होने का खतरा, और इसी के साथ आउट। लाउमी आखिरकार अपने धैर्य को संभाल कर न रख पाई, धैर्य टूटा, एरियल रूट का इस्तेमाल, और इस बार लॉन्ग ऑन पर शेफाली वर्मा के हाथों में एक आसान कैच, और इसी के साथ ये 7वां विकेट जाता हुआ, कुल 38 गेंदों का सामना किया यानी कि 6 ओवर और 2 गेंदे खेल करके ये जोड़ी टूटी है। इस बार ये धीमी गति की गेंद का, उंगलियों का इस्तेमाल, ऑलमोस्ट लेग कटर की तरह ये गेंद डाली थी नंदिनी शर्मा ने, और उसमें फंस गई लालच में, मारने की कोशिश हवा में, और कैच आउट हो गई। सो विकेट नंबर 7 का पतन हो गया है, ये 15वां ओवर चल रहा है, नंदिनी शर्मा अपने कोटे का अंतिम ओवर डाल रही हैं, और 3.5 ओवर में 18 रन दे करके उन्होंने 2 विकेट हासिल किए हैं। कोटे की अंतिम गेंद करने के लिए अब वो तैयार होंगी, नई बल्लेबाज सुनीता अब मैदान पर आई हैं। 15वां ओवर, अंतिम गेंद, और अभी भी अगर देखें तो 100 रन दूर है थाईलैंड, 100 रन दूर, 60 है स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, इस ओवर की अंतिम गेंद सुनीता के लिए, और इस बार कॉट बिहाइंड की अपील, अंपायर ने उंगली उठा दी, और इसी के साथ सुनीता आउट। नंदिनी शर्मा को लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट, हैट्रिक पर, लेकिन अब उनके पास ओवर ही नहीं है इस मैच में।
2: सो विल दैट हैपन इन द नेक्स्ट मैच?
0: quick one there. The ball just cutting away, and Sunida had no chance whatsoever. She just poked.

0: to adjust. But Nanapath on strike. Kranti Gourde bowls it outside the off stump, trying to kind of drive it away from the body. Doesn't connect. And Tipacha is the last player who has come out for Thailand. The 16th over is in progress. Good to see that India probably will not allow Thailand to play all the 20 overs. Very important, as the last player out was Onicha, was run out by Smriti Mandhana. Big shot there by Nanapath. She goes over mid-on. She gets a boundary and she continues her good run. She definitely deserves a half century, Iqbal. She's on 40 right now, and she really has played her heart out today. And she's the lone warrior as far as Thailand is concerned.
1: Yeah, the team ka score 64 run hai, aur usme se akele Nanapath ke 40 run hai. सभी खिलाड़ियों ने मिलकर के 14 रन, उसमें एक्स्ट्रा के भी रन हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंडिया वर्सेस थाईलैंड नहीं, ये नानापत वर्सेस इंडिया का मैच हो रहा है. एक लौती खिलाड़ी हैं जो खड़ी हो पाई हैं, वरना सभी खिलाड़ी ने हथियार डाले हैं. अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, इस गेंद को पॉइंट पर सिंगल मिल गया, और इस सिंगल के साथ नानापत अब पहुंच गई हैं 41 पर 65 थाईलैंड 9 विकेट के नुकसान पर. दो गेंदें इस ओवर में बची हुई हैं. क्रांति गौड़ के पास मौका है थिपाचा का विकेट लेने का.
0: यस, एंड इफ क्रांति कैन फिनिश इट ऑफ इन दिस पर्टिकुलर ओवर, दैट विल बी वेरी वेरी गुड. इट विल बी सॉर्ट ऑफ एन आइसिंग ऑन द केक, एंड इंडिया विल बी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट इफ दे आर एबल टू फिनिश इट ऑफ इन दिस पर्टिकुलर ओवर, व्हिच इज द 16th ओवर ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिंग्स. नानापत एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड ऑन 41. थिपाचा द लास्ट प्लेयर हु हैज कम आउट, एंड थिपाचा पुथावोंग is the player, 65 for 9. Thailand, Kranti Gourde bowls. Oh, trying to just glide it towards third man area. Doesn't connect. This will be great learning for the Thailand girls. There's no doubt about it. Because they've been playing a lot of T20 format matches, but mostly with the associate nations and the lesser known teams. They don't get too much of a chance, apart from these kind of tournaments, to play against a team like India, Pakistan and other ones, which is very, very important. Quick ball zipping past the bat of Thipaccha, who had no clue whatsoever, beating the outside edge. End of over number 16. 65 for 9 is what Thailand have made. So it's a brave attempt from Thailand, Iqbal. But the fact remains that India sharpening the bowling. And I guess if you look at all the teams, I guess India has the best bowling attack, if I may say so, in this particular Asian championship. And they're really working hard on that. So can India continue? Is this a good start for them? Because if they win, this will be a big, big victory for India.
1: निश्चित तौर पर. अब गेंदबाजी करने के लिए दीप्ति शर्मा को बुलाया जा रहा है पारी का 17वां ओवर लेकर के. इस पूरी इनिंग्स में नानापत को छोड़कर के कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े में नहीं पहुंच पाई हैं थाईलैंड की तरफ से. 9 विकेटें गिर जाने के बावजूद भी हम ये कह पा रहे हैं कि कोई भी खिलाड़ी दहाई के आंकड़े में नहीं पहुंची हैं. सिर्फ नानापत ही ने दहाई का आंकड़ा छुआ है. इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कमजोर थाईलैंड की बैटिंग रही है. दीप्ति शर्मा इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए आ रही हैं. 17वां ओवर है पारी का. क्या ये पारी का अंतिम ओवर हो सकता है? नए ओवर की शुरुआत. पहली गेंद रूम बनाकर कट करने की कोशिश, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर का डाइविंग कैच, और इसी के साथ भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया है. 94 रनों से थाईलैंड को पराजित कर दिया है. एशिया कप, विमेन्स एशिया कप के भारत ने अपने पहले मुकाबले में शानदार जीत हासिल की. इस मुकाबले में भारतीय टीम 94 रनों से जीत हासिल कर रही है, और एशिया कप के इतिहास में भी दीप्ति शर्मा अब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं. 29 विकेटें इसी विकेट के साथ एशिया कप में अब दीप्ति शर्मा के विकेट्स की संख्या हो गई है. और निश्चित तौर पर एक बहुत ही बढ़िया दिन रहा है दीप्ति के लिए. 150वां मुकाबला बहुत यादगार रहा है. तो जाते जाते आपको बता दें कि आज के मुकाबले में टॉस जीता थाईलैंड की कप्तान ने. टॉस जीत करके उन्होंने भारत को पहले बैटिंग करने के लिए कहा. भारत ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर्स में 159 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, और जवाब में थाईलैंड की टीम 16.1 ओवर में 65 रन.

बना करके ऑल आउट हो गई और इस तरह से भारत ने विमेन्स एशिया कप 2026 में 94 रनों की जीत के साथ एक धमाकेदार आगाज किए हैं। तो इसी सूचना के साथ मैं मोहम्मद इकबाल, अपने साथी कमेंटेटर पंकज अठावले, स्कोरर रजित सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन

0: India opened their campaign in the Women's Asia Cup 2026 with a statement issuing thumping 94-run win. Hello and welcome to Player of the Match. I am Megha and joining me in studio as my co-host is Gautam. We've got former Indian cricketer Latika Kumari and senior sports journalist Rakesh Thapliyal.
1: And this match was interesting too because the start कहीं ना कहीं एक जीत के साथ किया है टीम इंडिया ने और वो कंपैरिजन 66-74 और अब फाइनली ये जो डिस्टेंस हमें देखने को मिला है इसने एक अलग कीर्तिमान सेटल कर दिया है बिकॉज हाँ शुरुआत में कहा जाता है कि शुरुआत अगर भली होती है तो सब भला होता है लेकिन जिस तरीके से परिणाम हमारे सामने है बहुत ही बढ़िया एक्साइटेड हम सब हैं कुछ कहेंगे मैम आप
2: बहुत ज़रूरी होता है जब कोई टूर्नामेंट हम स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से पहला मैच हमारा जाता है कौन कौन से बॉक्स हम टिक करते हैं तो आज मैं ये कहूँगी कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने एक अच्छा क्रिकेट खेला है एग्जीक्यूशन अच्छे हुए हैं बट फिर भी यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि आपका मिडल ऑर्डर कैसा खेल रहा है कि लास्ट में आके जो रन्स आने चाहिए वो आज के मैच में उतने आए नहीं है तो मुझे लगता है कि बैटिंग में अभी भी काम करना बाकी है
0: बिल्कुल और राकेश अगर हम यहाँ पर फील्डिंग की बात करें तो जब दीप्ति शर्मा ने स्लिप्स में वो कैच छोड़ा डेजा वूसा लग रहा था लेकिन उसके बाद से काफी इम्प्रूव फील्डिंग शो देखने को मिला मंदाना का डायरेक्ट हिट शिफाली वर्मा का वो डाइव इस तरह के कई एफर्ट्स देखने को मिले
3: देखिए अच्छी चीज है ये लग रहा है कि भाई कैंप के अंदर जो काम हुआ है फील्डिंग के ऊपर वो दिखाई दे रहा है बॉलिंग पे काम दिखाई दे रहा है हालांकि जो आपके बैटर्स हैं वो ऐसे इतने बड़े लेवल के नहीं थे कि जिसमें हमारी बॉलिंग की परीक्षा हो लेकिन जो लाइन एंड लेंथ की बात है वो उसमें अच्छे हमारे बॉलर्स रहे हैं और आपने देखे 9 ओवर में 44 रन पे 6 विकेट उनके गिर गए थे तो मैच तो वहीं खत्म हो गया था पहले 10 ओवर में हम अच्छा खेले और वो पहले 10 ओवर में अपनी बैटिंग में खराब खेल के उन्होंने मैच हाथ से निकाल गया देखो क्या होता है कि ये एक 40 ओवर का मैच है 2020 का मैच है तो कोई भी आपकी तैयारी जो होती है वो 40 ओवर के लिए होनी चाहिए है ना पहले 20 ओवर में आप अच्छा खेले थाईलैंड लेकिन उसके बाद वो एक कंप्लेसेंसी उनके अंदर दिखाई दी बैटिंग में वो डेप्थ नज़र नहीं आई एक उनकी एक बैटर को छोड़ के और कोई भी जो है डबल फिगर में नहीं आ पाया और हिंदुस्तान की तरफ से ये अच्छी बात है कि हमारे एक्स्ट्रा भी कोई डबल फिगर में नहीं हो एक एक्स्ट्रा रन गया तो एक अच्छी बात है वो भी वाइड का तो मुझे लगता है कि बॉलर्स ने हमारा अच्छा किया थाईलैंड की भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने हमें शुरुआती झटका दे दिया और ये झटका हमें आगे के मैचों में काम आएगा
1: डबल नहीं वेल
4: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है दोनों देशों ने आज खनन आयुर्वेद पर्यटन आर्थिक और वित्तीय संवाद व्यापक और रणनीतिक साझेदारी उच्च शिक्षा और
5: शफकत मिर्ज़ियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं
6: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्री के बीच डायरेक्ट लिंकेज को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे हमारा मानना है कि टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्लेक ऑर्डर भी प्रदान किया गया ये विदेशी नेताओं को प्रदान

0: किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले के 44वें मिनट में जर्मनी के मिशेल स्ट्रोथॉफ ने एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कमाल किया है शेफाली वर्मा ने, 64 रनों की पारी खेली। और शुरुआती दौर में जब आपको पता है कि एक खिलाड़ी जो आपके साथ ओपनर आया रन आउट होके चला गया, तो ऐसे में दबाव कितना होता है, कितना प्रेशर होता है?
1: देखिए दबाव ये कहते हैं इस मैटर ऑफ एंजॉयमेंट है, क्रिकेट आप खेल रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए, दबाव के लिए कोई नहीं खेलता। और जब एक बड़ी प्लेयर आउट होती है तो दूसरी प्लेयर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे आती है, और शेफाली वर्मा ने वो दिखाया राइट फ्रॉम द 50 ओवर वर्ल्ड कप। हम देख रहे हैं कैसे उनको सेमीफाइनल में लाया गया था, सेमीफाइनल फाइनल में उन्होंने अच्छे ही प्रदर्शन किया, इसी वजह से आज वो इस टीम का हिस्सा है और इतना बड़ा उनका नाम है। जिस तरह के शॉट्स उन्होंने खेले तो बड़े इंटरेस्टिंग शॉट्स खेले उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त, अच्छा लग रहा था कि अच्छे निक में लग रही थी शुरू से ही। और लेकिन वो आउट जो हुई है, आउट बहुत ख़राब हुई है। आज उनके पास मौका था, जब एक टीम में आप सेट हो जाते हैं उसके बाद आपको बड़े स्कोर खेलने की आदत डालनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि 50-60 रन बना के आपके अंदर एक कंप्लेसेंसी आ जाती है, या उस बॉलर को बहुत लाइटली आप लेने लगते हैं। तो जिस तरीके से वो आउट हुई, वो आउट होना उनका बहुत खराब था, लेकिन इनिंग उन्होंने बहुत अच्छी खेली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेली। पारी को जो संवारना उन्हें आता है वो एक आर्ट है। देखिए वो आर्ट थाईलैंड के बल्लेबाजों में कहीं नजर नहीं आई, उनके एक बल्लेबाज को छोड़कर बाकी किसी के अंदर वो चीज़ नजर नहीं आई। और शेफाली वर्मा तो देखिए अच्छी फील्डिंग में भी वो अच्छा प्रदर्शन करती हैं, बल्लेबाजी में जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ शॉट खेलती है ना, उनके शॉट्स गेंदबाजों के हौसले पस्त करने वाले होते हैं। वो एक बड़ी चीज़ है कि किस तरीके से आपको फ़ायदा उठाना है पावर प्ले का, कैसे जो है आप पिच ड्राइव खेलने हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई दी। और उनके शॉट्स में अच्छी इंटरटेनमेंट भी होती है, क्योंकि लोग तो स्टेडियम में ज़्यादा नहीं थे, लेकिन क्रिकेट जो है वो इंटरटेनमेंट भी है, आपको इंटरटेन भी करना है। तो ऐसे आपने इनिंग खेली कि जिसमें लोग इंटरटेन भी हुए, आपकी टीम को भी फायदा मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आप खेले, अच्छी एक पार्टनरशिप आपने लगाई प्रतीका रावल के साथ, तो वो एक टीम के लिए बड़ा योगदान देके गई, वरना बड़ा लॉस हो सकता था। 10 ओवर में हम 100 रन पे कुछ ज्यादा रन बना पाए थे, उसके बाद अगले 10 ओवर में हम बिल्कुल ढह गए।
2: जी बिल्कुल। और 19-30-20 आई अर्धशतक उन्होंने जड़ा, एक बात कही वहां पर दोनों कप्तान हरमन और उसके अलावा शेफाली वर्मा ने भी कि देयर वाज होल्ड इन द विकेट। लतिका उसके बाद लगा ऐसे जो बल्लेबाज आए हैं कंडीशन का क्या सही उन्होंने आकलन किया था, क्योंकि दे वर गोइंग फॉर देयर शॉट्स।
3: बिल्कुल। और देखिए हम भी ये बात कर रहे थे कि मैच देख रहे थे जब कि थोड़ा सा ग्रिप कर रहा है बॉल वहां पर, और जो हमारे बल्लेबाज हैं या तो वो बॉल को जज नहीं कर पा रहे थे और बॉल थोड़ा डिप करके जा रहा था, तो डिप जब बॉल करता है ना तो थोड़ा कदमों की चहलकर्मी दिखानी पड़ती है, तो वहाँ मुझे लगता है कि जजमेंट थोड़ा सा वीक लग रहा था बल्लेबाजों का, जिसकी वजह से डॉट बॉल्स का प्रेशर उनके ऊपर आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बॉल को सही तरीके से आप जज करते हैं, डिसीजन सही तरीके से लेते हैं किसी भी शॉट को सिलेक्ट करने के लिए, तो वो आपको आगे आने वाले इनिंग्स में भी हेल्प करेगा। तो स्पिनर्स जब बॉल डाल रहे हैं, बॉल होल्ड कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको अटैक करेंगे स्पिनर पे तो ज़्यादा आसानी होती है खेलने में, रादर देन आप विकेट में रहकर क्रीज में रहकर गेंदबाजों को खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो ग्रिप कर रही है सतह जो ग्रिप करती है गेंद को, तो वो कहीं ना कहीं हलचल करती है और वो हलचल बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान करती है।
0: देखिए हलचल काफी अच्छी है, लेकिन आने वाले मुकाबलों की अगर बात करें तो वहां पर भी मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा और क्लिक करना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके जहन में भी होंगे, उनके जवाब शायद राकेश जी बेटर तरीके से दे सकें कि आज शेफाली वर्मा चली बहुत बढ़िया था, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जितने भी हमारे श्रोता थे या जितने भी मैच लोग देख रहे होंगे कि हाँ किसी और का क्लिक होना भी बहुत ज़रूरी था?
1: देखिए मैं तो ये चाहता हूँ हमेशा से कि आप वक्त की नज़ाकत के हिसाब से खेलें, आप वक्त की टीम को ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से आपको खेलना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्रिकेट में कहते हैं कि दो विकेट जल्दी जल्दी मत जाने दो, हमारे साथ दो बार ऐसा वाक्य हुआ कि एक एक ओवर में हमारे दो दो विकेट गिरे, और वो खराब शॉट सिलेक्शन था। हरमनप्रीत जो हमारी कप्तान है उन्होंने भी बोला कि खराब शॉट्स हमने खेले जिसकी वजह से विकेट गंवाए। तो आपको इंटरटेनिंग खेलनी है प्लस टीम की जरूरत के हिसाब से। तो जो ये नए खिलाड़ी आए थे क्रिकेट के अंदर, देखिए टैलेंटर एक बहुत पुरानी चीज़ है, आज वो चीज़ मुझे तो खत्म होती दिखती है। हम किसी को टैलेंटर नहीं मानते, टैलेंटर कहना पहले एक थोड़ा सा खिलाड़ी का एक अपमान सा माना जाता था, लेकिन आज हर खिलाड़ी को योगदान देना है। जो निचले क्रम का गेंदबाज भी है तो उसको भी तैयारी कराई जाती है कि आपको 10-15 रन का योगदान कैसे आप दे सकते हैं, जरूरत के हिसाब से खेलना है। दूसरा बल्लेबाज अच्छा कर रहा तो आप उसको चांस दीजिए, सिंगल लेके उसको मौका दीजिए। ये सारी चीज़ें जो पारी को संवारने में काम आती हैं वो हर खिलाड़ी को दिखानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर टीम के लिए खेलना है प्लस अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी को भी दिखाना है। अगर आप

0: अच्छी एबिलिटी के साथ प्रदर्शन करेंगे तो उसका टीम को भी फायदा मिलेगा, लेकिन आप अच्छी एबिलिटी पिच पे जाके नहीं दिखाएंगे तो वहां आपको कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान होगा, टीम को भी नुकसान होगा।
1: और लतिका, जितनी बल्लेबाजी डीप हो, मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज होते हैं या टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज होते हैं, उनके पास भी कॉन्फिडेंस होता है अपनी रणनीति बनाने का कि कुछ अगर जरूरत पड़े तो नीचे से कंट्रीब्यूशन आ सकता है।
2: देखिए, बिल्कुल, आपके पास प्लेटफॉर्म एकदम सज गया था, ऊपर जो आपके ओपनर्स थे उन्होंने अच्छी खासी वहां पे बल्लेबाजी की, आपको ये दिखाया कि इस विकेट पे किस तरह की शॉर्ट सिलेक्शन जो है आप करके इनिंग को आगे लेके जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब ऐसे बॉल थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप स्ट्राइक रोटेट इनिंग के बीच में कर सकते हैं, तो डॉट बॉल्स का प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा और आप बड़े शॉट्स की तरफ नहीं देखेंगे उस टाइम पे। क्योंकि जितने भी हमारे, अगर फुलमल्ली की बात कर ले हम, दीप्ति शर्मा हो गई, ऋचा घोष हो गई, ये सब एक बड़े हिट को लगाने के वजह से जो है अपना विकेट गवाया इन्होंने। तो मुझे लगता है जब आपके पास ऋचा घोष 13वां ओवर में आ गई थी अंदर, उनके पास 7 ओवर थे वहां से, अराउंड 40-40 बॉल्स उनके पास थी खेलने के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको वहां इनिंग बिल्ड करना आना चाहिए अपने पार्टनर के साथ बात करके। क्योंकि जिस तरह गेंदबाजी हो रही थी, कहीं ना कहीं आपको एक या दो गेंदें ऐसी मिल रही थी जो आप बड़े शॉट में उन गेंदों को कन्वर्ट कर सकते थे। तो एक टेम्परामेंट आपका कैसा है उस टाइम पर बल्लेबाजी करते हुए, और किस तरीके से, जैसा कि हरमन ने भी कहा कि आपके शॉट सिलेक्शन क्या है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं एक गेम को एक अच्छे नोट पे फिनिश करने के लिए, जहां हम 20-25 रन थोड़ा पीछे रह गए।
3: और सबसे बड़ी बात पता है क्या, मौके जरूर मिले थे थाईलैंड को कैचेस के, लेकिन वहां पर वो कैचेस ड्रॉप हुए थे और वो सीधे सीधे कैचेस थे। राकेश जी कुछ कहेंगे इस बारे में?
0: वो उतना उनको एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर उस तरीके का होता कि क्या होता है कि आउटफील्ड में जब आप खड़े हैं या इनर सर्कल में खड़े हैं, थोड़ा स्टार्ट आपको लेना पड़ता है, थोड़ा झुक के चलना पड़ता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोचिंग स्टाफ उन तक वैसी उनको कोचिंग उस तरह की नहीं दे पाया, या उनको बताया गया तो वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए। क्योंकि एक प्रैक्टिस में चीजें करना अलग बात होती है, और मैच के अंदर जब बड़ी खिलाड़ी जिनका नाम हो, जिनके पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है, तो उनके खिलाफ जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी उस चीज का दबाव रहता है। तो वैसे ही मतलब फुर्ती इतनी उनमें नजर नहीं है, लेकिन आप देखिए जब सेकेंड हाफ में वो कैच पकड़ने लगे तो उन्होंने कैच पकड़े, बाद में उन्होंने दिखाया, हालांकि वो थोड़े आसान कैच थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर डिफिकल्ट कैचेस भी आपको पकड़ने पड़ते हैं।
1: लतिका, अब हम शो के समापन की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो वापस से भारतीय गेंदबाजी पर जिक्र करते हुए चलते हैं, खास करके पेस अटैक जिसपे बहुत सवाल उठ रहे थे। आज जो जवाब मिले हैं शायद कंक्लूसिव जवाब नहीं है, लेकिन जिस तरह से नंदिनी ने शुरुआती स्पेल में मूवमेंट का इस्तेमाल किया और उसके बाद समझदारी से स्लो ओवर्स का इस्तेमाल किया,
2: देखिए बिल्कुल, और काफी काम करना पड़ेगा अभी भी। अगर आप इससे बेहतर किसी टीम के सामने गेंदबाजी करने आते हैं, क्रांति गौड़ जिस तरह की गेंदबाजी करती है, नंदिनी जिस तरह की गेंदबाजी करती है, मुझे लगता है कि नंदिनी के पास जो है स्विंग करने की जो कला है उसकी वजह से वो विकेट लेने में कामयाब होती रही है। सही लाइन और लेंथ पे अगर गेंदबाजी करते रहेंगे, वहां मेहनत करते रहेंगे, तो आपको और सफलताएं मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि आज विकेट उनके खाते में आए, और बहुत टाइम के बाद ये विकेट देखा है हमने एक पेस बॉलर्स के, चाहे वो क्रांति गौड़ हो चाहे वो नंदिनी हो, तो अच्छा लगता है कि जब आपके अपफ्रंट आकर जो गेंदबाज हैं, जो इनिंग की शुरुआत करते हैं, वो गेंद विकेट लेने में कामयाब रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले मैचेस में और अच्छे इनके जो स्टैट्स हैं वो हम देखने को मिलेंगे।
3: बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें आग हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, इरादों में जीत की गूंज चाहिए। शंखनाद, कमाल का हो गया है, शुरुआत काफी भली हो गई है, लेकिन आने वाले सफर में और भी सारे हर्डल आने वाले हैं। लेकिन बहरहाल मुझे पता है कि पल पल की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन पल पल की अपडेट्स के लिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी समय हो गया है कि हमें जाना पड़ेगा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
1: जी बिल्कुल, और अगली चुनौती भारत को मिलनी है 3 तारीख को हांगकांग के रूप में, हमारे विशेषज्ञों का, आपका गौतम बहुत बहुत धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी प्रोडक्शन टीम का भी, माधवी, वंदना भारद्वाज, स्वाति कपूर हमारे प्रोड्यूसर हैं, शाहनवाज खान, टेक्निकल टीम है हमारी अजय राणा, जयराम, सुशील कुमार और सचिन वत्स की। और इसके साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं और वापस आने के वादे के साथ यहां से साइन ऑफ करते हैं।
4: प्लेयर ऑफ द मैच।

0: अभी आप विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
1: यू हैव बिन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड ऑफ द वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।